भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगी तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है। दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन से दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन से और से अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लाइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर ऑफ नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बहार नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर हम चलते हैं। पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1966 का ये फिल्म है, मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें।

चला हूं और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का

खैर हो। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं, और कहते हैं मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्ग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो हम सबसे ज्यादा चाहने वाला, मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाला, मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारे है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है, और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फोन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी खबरोगन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई। मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी। अब बात नफरत की है, सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए। फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं दोस्तों, प्यार का सागर। फोन नहीं खती होंद आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपने आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझ को मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फनीकत होंद द्रियन शस्त जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग हम आपको सुनाया है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

इस है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सुरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है, चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिलवाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बाहर प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवानी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

0: तेरी कमाल। और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा। मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों। आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में और फिल्म मूवी का नाम है अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।

और दोस्तों हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो। सनम आज भी बीच बीच में कुछ शायरी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे। क्या कहते हैं, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है दोस्तों, तेरे आगे जमाना है। तो कुछ कहते हैं एक और कि तो हजार बार भी रोती तो मना लूंगा, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख जानू मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो तब तो मनावे, नहीं वैसे लात ना चली। नहीं दोस्तों, प्यार में लात नहीं, प्यार चलते हैं। किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है फिर क्यों बेवफाई के वो इल्ज़ाम दे रही है। तो हम चलते हैं एक गीत के ओर, वो है तेरी जाना दिल के, लेकिन चांदनी के पास हम जाते हैं। चांदनी क्या कहते हैं,

और मेरी चांदनी, अगर आप ऊपर देखोगे तो तुम्हारी चांदनी ऊपर आकाश में है या तुम्हारे बगल में है, ये तो आपके लिए हम छोड़ दे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। कि कहते हैं अपनों के बीच बेगानी हो गई है, अपनों के बीच कभी कभी होता है दोस्तों कि जो सोचते हैं कि हमारा है उसके बीच में तुम बेगानी हो गए हैं, अपनों के बीच में बेगानी हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वही वीरानी, आज वही पर वीरान हो गए है। तो हम चलते हैं अपनी महबूबा के ओर, और आपके महबूबा कौन है वो तो आपके बगल में होगा, लेकिन यहाँ हम फिल्म धर्मवीर के बातचीत करते हैं, और धर्मवीर में ये माँ धर्मिंद्रा, धर्मिंदर सिन्नत अमन और जोर तोर से इसमें काम किया है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और ओ मेरी महबूबा, ओ महबूबा महबूबा में क्या क्या होता है, और गुस्सा होता है और प्यार भी उसी से ज़्यादा होता है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर दोस्तों, की जाती है इस झील की गहराई, जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, यानी कि दीप्त कहाँ तक जाते हैं, कि जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आँखों में तेरी धूप के, आँखों में तेरी धूप के देखेंगे किसी रोज, आँखों में तेरी धूप देखेंगे हम और किसी रोज देखेंगे, और जो देखेंगे तो प्यार तो जरूर होता होगा, कि जो शख तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारी दीदार में उसको क्या होगा। तो हम चलते हैं नाइटिंगेल लता जी के ओर, और इस फिल्म में राजकुमार नीतू ने काम किया है, फिल्म के नाम है अनारी।

और तेरा जाना ओ नैतिकी लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं और एक गीत को ओ लक्ष्मी के प्यारे लाल का गाया यानी बजाया हुआ सजाया हुआ ये गीत है मुकेश माइती मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग फिल्म के नाम है जोंग मी तो दीवाना दीवाना और दीवाना फिल्म मिलन की ओर हम लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों।

और मैं तो भी दीवाना दीवाना और दीवाना हो चुका है। और हम चलते हैं कि कहते हैं महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, नींद इसके नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पिला देना गो, दो घूंट पी लेना दे आंखों से पहले से, नशा तेरी आंखों में शराब जैसा। तो दोस्तों तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर, और एक सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग है जो एक इसको पहला पहला प्यार भी कहते हैं दोस्तों।

0: और पहला पहला प्यार तो सभी को होता है, और जिसे पहला प्यार होता है उसके तो मालूम है कि प्यार क्या बातचीत है, प्यार क्या होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों एक गीत की ओर हम जाते हैं। एक कोई ज़माना में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जया प्रधा ने काम किया है, और ये फिल्म का नाम है शराबी। शराबी फिल्म के नाम है दोस्तों, लेकिन हम शराबी नहीं हैं, फिल्म का नाम है शराबी। तो आओ मिलकर सुना जाए किशोर जी और आशा भोसला का गाया हुआ, आशा भोसले को गाया हुआ ये गीत है।
1: ये क्या मजाक है विकी साहब?
2: मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आस पास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
2: हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने, शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है।
2: वाह, तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
1: जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
2: तवायफ? कोठा मतलब हवा, आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया।
0: कभी जिंदगी में किसी को जलील मत करना दोस्तों, जलील जब किसी को किया तो वो अच्छा बात नहीं होता है, किसी को जलील मत करना।

और मुझे नौलखा मंगा दे रे। और वो कौन है, किसको कहते हैं? सजना दीवानी के बात होते हैं। और आज आप लोग को हम क्या क्या सुनाएंगे दोस्तों, और हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसका कहते हैं दीवांगनी के ओर हम जाते हैं। कि दीवांगनी में एक लॉन्ग सॉन्ग है भाई, इसमें सैफ अहमदी का गीत है, हम आपको सुनाते हैं।

हाय बहनों, जब मुसीबतें आपके जीवन में आती है बिना रुके बारिश की तरह, तो फिर याद रखें कि आपकी सही सोच विचार हमेशा एक छतरी यानी एक छाता की तरह आपकी सहायता करेगी।

भाई बहनों, जीवन कठिन है क्योंकि हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि लक्ष्यों पर। ये वे तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मित्रों, हमको सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

प्रिय भक्तों, परमात्मा कहते हैं कि न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो, ये ही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी करो मुझ परमात्मा को अर्पित कर दो। ऐसा करने से जीव

मित्रों, अपने जीवन में कभी किसी को दोष ना दें। अच्छे लोग आपको खुशी देते हैं, बुरे लोग आपको अनुभव देते हैं और सबसे बुरे लोग आपको सबक देते हैं और सबसे अच्छे लोग आपको यादें देते हैं।

महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे नया बच्चा आया है तो उन्हें हार्दिक से स्वागत और बहुत सा बधाई आप परिवार को दिया जाता है। जिनके आज जन्मदिन है उनके भी बहुत बहुत बधाई दिया जाता है।

सभी जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अप्रत्यक्ष वरदान तुकवंश। जो अपने स्कूल के तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए और ये कहना चाहूंगा हर बार की तरह कि माँ सरस्वती को बोलना नहीं, बुद्धि और ज्ञान के बांटने वाले माँ सरस्वती को जरूर नमन कर लेना।

het mooie markten. Hele mooie bruggen in Nederland. Mooie gebouwen langs Amsterdam en over het hele land, maar je Amsterdam mee kaag jata hai. Unko dekhne ke liye log kitne desho se aate hai. Langs de snelweg. इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर घरों जो हमारे देश में बनाया गया है, जिनके आर्किटेक्ट ऐसा ऐसा काम करके रखे हैं, उनके देखने के लिए बहुत से देशों से लोग आते हैं। कुछ सुंदर सा घर जो नौ तौरब में भी बनाया गया है, जिनको देखने के लिए लोग अनेकों देशों से आते हैं। Architect van Nederland. इसी प्रकार से हर एक शहरों में कुछ न कुछ है जो आप देख सकेंगे। और जो सफर पे जाने वाले हैं, उनके लिए ये कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना, ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे।

निखिल वर्मा की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों कहते हैं कि मंजिले मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

दो ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। ये सुंदर सा भजन हम सुने सिंपाल खारल की आवाज में। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। आप सभी को एक सुप्रभात कहते हुए हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। राधा नाम की माला गजेंद्र प्रताप सिंह और निखार जूनियर ने गाए हैं।

कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, अध्ययन भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। सुना लो, हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

गाय ने केला देखकर और मुंह मोड़ लिया। सुनने वालों, एक महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ गए थे। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने के हो गए। महिला डर कर बिना केला खिलाए चले गए। महिला के जाने के बाद पास खड़े एक सांड, जिसे हम बैल से जानते हैं, और पूछा, वे इतने प्यार से केला खिला रहे थे, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डरा कर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी है, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहते हैं, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चले जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को डरती है, प्रेम से सुखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहते हैं वे दुर्योधन है, जो अपनों को भला चाहते हो वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हो वो कृष्ण कहलाते हैं।

की प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्राप्ति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। Lieve luisteraars, een goede morgen toegewenst. और जो हमारे देश में सफर करने को आए तो उनसे ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दनहाग शहर में जो मार्ग कहलाते हैं द ग्रोटस्ट मार्ग फॉर यूरोपा, 3 keer 450 meter lang, और जहां से दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग वहां भी अपना सामान लेने को आते हैं,

कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से ही खुशियाँ दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना कहलाते हैं।

किसी ने अच्छा कहा है कि नया रोशनी नया दिन एक शुभ दिन आपको प्रस्तुत है। हैव अ ब्यूटीफुल डे। जो इस समय अपने कार में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें शुभ यात्रा कहा जाता है।

दोस्तों ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

और सुनने वालों, मनुष्य को ठंड और घमंड दोनों के विचार सहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

एक गीत जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में हम सब सुने, जो एक लाइव परफॉर्मेंस का और यानी कि ओपत्रेद के जो रिकॉर्ड किया गया है, और इतना सुंदर सा गीत जो उन्होंने यो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। क्या हम कभी किसी से वादा किए हैं? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न रखते हैं कि कभी ना कभी कोई वादा हम नहीं निभाए हैं?

जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में है तो कहा जाता है दोस्तों कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटे बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार। ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनाह कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

क्यों ना हो। हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों, ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

किशोरदाजी की आवाज सुनिए, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ गई, करम का थप्पर मेरे दोस्तों, करम का थप्पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जन्म, हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने, कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि कब हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता।

अब के साथ अब के मौसम अब के सावन जी धर के। लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा 1983 तक में ये रिलीज किया हुआ फिल्म है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि आप चलना सीख जाए। एक सच्ची बात आपसे कहना चाहती हूँ। एक सच्ची बात ये है कि बुरे समय में दिलाशा देने वाला, बुरे समय में दिलाशा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है।

कितनी मधुर पुकार है मेरे प्यारे सुनने वालों, रफी जी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त नईमुद्दीन अख्तर सेस्तक की ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। म्यूजिक इसमें दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मयूर सुल्तानपुरी जी के लेखक हुए प्रीति।

0: कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Aap sun rahe Vahon Hindustani Radio aapke liye. Tera piche na chhodenge soniye. Film Jugnu se Kishore Daji ki awaaz mein.
2: वही तो है।

बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही, अपनों को अपनों से ही जलन है।

फिल्म यादों की बारात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया किशोर दा और हम देखे तो मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हमने श्रवण की है और म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर आर डे बर्मन जी। यादों की बारात टाइटल सॉन्ग आपने सुने। नवंबर 1973 के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

तमाशा सच का होता है, तमाशा सच का होता है, झूठ की तो तारीफ ही होता है। हाँ, झूठ का तारीफ ही होता है, पर परिणाम कुछ और होता है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ जी, कोई आपका प्रशंसा करे या आपकी निंदा करे, दोनों ही अच्छे हैं। तो आप सोचेंगे क्यों? तो क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है, प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है, और निंदा सावधान होने का अवसर देता है। प्रशंसा प्रेरणा देता है और निंदा सावधान होने का अवसर देता है। यही अंतर हो जाता है प्रशंसा और निंदा में।

एपिक सॉन्ग रफी जी के आवाज में मतवाली मतवाली मतवाला कर देते हैं इनका शब्द और बयान इनका। तारीफ ही तारीफ, बहारे फिर भी आएगी नेक दिन सेशन सेस तक ये पिक्चराइज किया हो फिल्म में आपके हसीन रुख पे। मोहम्मद रफी जी के आवाज में लायरिक्स यानी के गीत का लिखक है अंजाम और म्यूजिक इसमें दी है ओपन नायर जी। फिल्म का प्रोड्यूसर गुरुदत्त जी जो एक एक्टर भी था।

मनुष्य मनुष्य अपने क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मुस्कान और मदद, मदद और मुस्कान, ये दोनों ऐसा इत्र है मुस्कान और मदद ये दोनों ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी।

चल का ये जाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, रफी जी की आवाज में यहाँ से एक बार फिर हमने सुन ली है फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जरूर से देखा है आप ही के आंखों में ऐ मेरे दोस्त, प्यार ही प्यार बेशुमार। फिल्म प्यार ही प्यार से निकाला गया है, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, डायरेक्टर था बप्पी सोनी और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन।

हाँ जी, आपसे प्यार है, आपसे प्यार है। उदित नारायण अलका जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल जी के पहला पहला पिक्चर सपने में। वो सपने में वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरे प्यारे दोस्तों, कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। और कहते हैं कि प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। और रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। और आगे में, भूलो उनकी गलतियों को, भूलो उनको गलतियों को, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे,

अलका जी की आवाज में, अलका जी की आवाज में आपके प्यार में हम बनने और संवरने और निखरने लगे। फिल्म का नाम रास और इससे पहले का गीत आपने सुने कि दिल लगा लिया मैंने, अलका जी और उदित नारायण जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया दिल है तुम्हारा, फिल्म का नाम। सांसे सांसे किसी का इंतजार नहीं करते, सांसे यानी कि आदम, हम सांस जो ले रहे हैं, हम सांस जो ले रहे ये किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, पर इतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम तो सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। पर पूछ लिया करो क्या हाल है, थोड़ा सुकून दिल को मिलता है। क्या हाल है आपका मेरे दोस्त।

बार आपके लिए हमने चुनकर रखी हूँ फिल्म डर से की जानू तेरी नजर, उदित नारायण जी की आवाज में।

किरण फिल्म डर से ये सुंदर सा गीत उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए आपी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से चला दिया गया है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। लंबा धागा यानी कि अलांगतौ अफखार, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखिए। धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखनी चाहिए। एक समय के बाद सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करती है। और मेरे दोस्तों, सब कुछ जान कर भी अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। और ये एक सुंदर सा लाइन है माता पिता के ओर बच्चे के ओर कि माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है मेरे दोस्तों, वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है।

इंसान, इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तब जाकर एक इंसान सफल होता है।

0: इतने सुंदर बयान अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी। और सच कहा है, आपको पता है कि भीड़ में, तन्हाई में, रात के तन्हाई में बस आप ही याद आते हो।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

लाखों आवाजों में पहचाने वाली एक आवाज ये ही, जी हाँ, लता जी की आवाज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता जी और उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, है ना? लेकिन जी हाँ, फिर लेकिन आ गया, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ, आप जरूर सुनते रहना, जरूर सुनते रहना, आपको हम यहाँ से जरूर बताएंगे वो कौन सा वार है। वो कौन सा वार है जो आता है और उसे यदि हम माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। जी मेरे सुनने वालों, उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार आबाद सलामत है तो सभी वार आबाद और सलामत है। इस परिवार के एकता में इतनी ताकत होती है, एक परिवार का एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए।

सही बात, अगर वो नहीं समझे तो हम क्या करें। और एक बात ये भी है कि अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, अच्छा लिखना शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए ना आए मेरे दोस्त।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित है यहाँ स्टूडियो में ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर और इसमें सहयोग देने वाले हैं शांता जी जो हमारे साथ उपस्थित है।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार होवे। जैसे आप सुन रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और राजेंद्र जी। यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। यही आशा उम्मीद है कि आप ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम पसंद करेंगे और हमारे साथ प्रेम और प्यार से बने रहें।
2: जैसा कि शांता जी ने कहा कि चांद अधूरा है रेडियो के बिना और रेडियो अधूरा है, संजय जी बोले कि उजाला कैसे है, तो मुझे लगा कि उजाला शांता जी की वजह से हुआ होगा और कुछ मौसम भी चेंज हुआ है, तो संजय जी बताइए कि उजाला एकदम अचानक कैसे हो गया।

आज हम सबका जो कार्यक्रम है बड़ा सुंदर सा और विषय रखा गया है, तो हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे, वो विषय की ओर बढ़ेंगे। हमारे कार्यक्रम में जो अभी तक घर पे बैठे हुए, क्योंकि ये एक बड़ा मज़ेदार कार्यक्रम होने वाले है आज, मन जिसका उदास है, तो पहले हम उदासी मन के अंतर्गत एक सुंदर सा अर्थ भरी और गीत को चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम सब और ये आज का विषय के बारे में बातचीत होगा।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों, सभी सुनने वालों से ये गीत, जो अर्थ भरी गीत जो हम सब सुने कि तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार। राजेंद्र जी, आज का और संदेश क्या है? हमने ये विषय जो आपने रखे है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, ये तो बड़ा गंभीरता बात है राजेंद्र जी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। इसी दुख की एक बात बताते हैं, जब सुनिए, सौभाग्य बनता है तो समझिए कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। तो शुरू करते हैं महाराजा दशरथ की जी उस तरफ से। महाराजा दशरथ जी को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं, बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था।
0: यानी कि उन्हें ये इस बात पे उतना दुख होने पे, हम ये रामायण में बहुत से बार सुने हैं कि राजा दशरथ का और कोई संतान नहीं थे, फिर भी उनको हौसला होते थे।
1: जी,
0: तो आगे बताइए जरा कैसे, कि ये हौसला कैसे हो सकता है? कोई जब दुख होता है, किसी के बच्चे नहीं या कोई प्रकार कुछ जिसका इच्छा होता है,
1: हौसला ऐसे होता है कि जैसे आप किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ नहीं पा रहे हैं और पीछे से कोई पुश कर दे हल्का सा तो आप इजीली चढ़ जाते हैं, ऐसे ही राजा दशरथ जी को हौसला बनाने के लिए सब लोग कहते थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो हौसला बन जाता था। जब वह बहुत दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आता था। कालिदास ने रघुवंश दास में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। कालिदास जी ने एक लिखा है बुक, उसमें वो बुक का नाम है रघुवंश राय, रघुवंशम। रघुवंशम मतलब जो भगवान राम का वंश है, रघुवंश है, तो कालिदास ने उसको

0: और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा।
1: अब समझ में आया, क्योंकि ये हर बार ये जो अपना शाप को पाए थे और यानी श्रवण कुमार के पिता से
0: जी,
1: तो वही ख्याल आता था कि वो शाप अभी मिलना है।
0: हाँ, वो ख्याल आता था कि उन्होंने बोला कि अपने पुत्र के वियोग में आप तड़प तड़प के मरोगे, लेकिन उस समय संतान नहीं थी तो उनको ये ख्याल आता था कि उन्होंने श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में मरेंगे, इसका मतलब मुझे संतान प्राप्ति होगी।
1: ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो जाता है कि देखो रामायण के गहराई में कितना और जा करके हम सबको ये सुंदर संदेश को आप कहाँ से निकाले।
0: ये तो सारा कुछ रामायण में ही है, और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा रहता है, और शांता जी भी रामायण बहुत पढ़ती है, तो कुछ शांता जी आप बताइए।
2: जी हाँ, रामायण तो मैं भी पढ़ती हूँ, पर ये जो जो जो योजन चल रहा है ना आज के, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगे कि दुख में भी सुख छिपा हुआ है। कितना दुखी होते हुए श्री दशरथ जी फिर भी ओके उतना खुश है हो जा है कि पान शाप के कारण कहों पे दूर प्रकाश में दूर दूर कहों पे ओके प्रकाशित।
1: यानी कि उन्हें ये बात का मालूम था कि हमें जो शाप मिला है श्रवण कुमार का पिता से कि उनका पुत्र को इन्होंने और जाकर के जल स्थान से और तीर कमान से तीर चला दिया था ना अनजान में।
0: हाँ, एक बार एक कहानी है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों में यात्रा करा रहे थे, तो वो एक बार एक जगह पहुँचे, उनके माता पिता ने कहा कि उनको प्यास लगी, तो वो घड़ा लेके पानी भरने गए। जैसे वो जलाशय से पानी भर रहे थे तो जब पानी भरने की आवाज़ आई तो राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है और पानी पी रहा, उसके गले की आवाज़ है, तो उन्होंने वहीं से शब्द भेदी बाण चलाया और वो सीधा श्रवण कुमार के लगा, और जब उन्होंने कर आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा कि लगता कोई गलती हो गई। वो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा घोर पाप हो गया है और ये शब्द भेदी बाण से, तो उन्होंने फिर उनके माता पिता के पास उन्होंने बोला कि जाइए मेरे माता पिता को पानी पिलाइए, लेकिन उनको बताना नहीं पानी पीने से। वही उन्होंने माता पिता ने वहीं पे उनको श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में मरेंगे, कुछ देर में फिर मर गए थे, वैसे आप भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है।
1: तो आपने इतना सुंदर से ये बात को सुनाए, ये शाप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था।
0: नहीं, ये श्राप दशरथ को संतान प्राप्ति की याद दिलाता था कि आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी, तभी आपको पुत्र वियोग होगा, तो उनको हर समय रिमाइंड कराता था कि पुत्र प्राप्ति होगी ही।
1: चलो तब इस पे एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत और हम सबको सुना दीजिए राजेंद्र जी, जो कि शांता जी ने हम सबके लिए खोज खोज करके चुन चुन करके और रखे है।
0: जरूर जरूर।

0: वो साथी दुख में ही सुख है छिपा। तो बताइए संजय जी, आपको दुख में सुख कैसे छिपा हुआ दिखता है?
1: दुख में कैसे, सुख में कैसे, या दुख में कैसे कौन छुपा रहता है?
0: दुख में सुख कैसे छिपा है और सुख में दुख कैसे छिपा है, दोनों वृतांत बताइए।
1: अब दोनों में कैसे मैं वृतांत बताऊं?
0: एक बता दीजिए, दूसरा शांति जी बता दीजिए।
1: चलो मैं एक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसा एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुआ था, जैसे आपने दशरथ जी का बताए ना
0: जी।
1: सुग्रीव जब माता सीता के खोज में वानर वीरों को पृथ्वी के अलग अलग और दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये बात रहे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब माता सीता के खोज में सभी इकट्ठा हुआ
0: जी,
1: तो सुग्रीव जी वानर सेना सभी इकट्ठा करके और सभी के सीख दे रहा था, ये कह रहे थे कि आपको इस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, किस ओर को नहीं जाना है। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये स्वभाव देखकर, ये ज्ञान देखकर और उनसे ये प्रश्न कर बैठे कि सुग्रीव जी, आप ये वानर सेना को अलग अलग ओर भेज रहे हैं, कहीं कहीं कह रहे हैं कि वहाँ जाने के कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने सुग्रीव से ये बात को जब पूछे तो सुग्रीव ने और ये कहे कि मैं कैसे बताऊँ। उन्होंने इस बात को कहा कि जब मेरे भाई बाली से मेरा और जबकि दुश्मन ही हो गया था ना भाई,
0: हाँ,
1: बाली
0: उनका
1: से
0: भाई, एक बार की कथा है कि बाली उनका दुश्मन कैसे हो गया था कि एक बार बाली एक राक्षस को मारते मारते गुफा में घुस गए, और गुफा में घुसे तो उन्होंने बोला अपना भाई सुग्रीव को कि आप गुफा के बाहर इंतजार कीजिए मेरा, अगर मैं एक महीने के अंदर लौट आऊं, बाहर आ जाऊं, तो समझ लेना कि मैं जिंदा आ गया, और नहीं लौट सका तो समझ लेना मैं मर गया। तो सुग्रीव ने एक महीना इंतजार किया और बाली बाहर नहीं लौटा, और एक दिन देखा तो उस गुफा के द्वार में पूरा खून की नदी बह के आई है, तो उन्होंने सोचा कि लगता कि बाली मारा गया, और उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया, गुफा बंद कर दी और घर आ गए। वहाँ से जब घर आ गए तो उन्होंने सोचा कि बाली मारा गया, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाल ली अनजाने में। लेकिन जब बाली आया, बाली जिंदा नहीं, वो राक्षस मरा था, बाली एकदम आया तो एकदम गुस्सा हो गया कि बताओ मैं वहाँ ऐसे ऐसे करने युद्ध करने के लिए गया, उस राक्षस का नाश करने के लिए गया, और सुग्रीव यहाँ राजा बन गए। इस बात से वो बहुत
1: क्रोधित हो गया
0: और उसने सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तो तब से सुग्रीव बाली की डर से उसने पूरे संसार में, पूरे जगह,
1: पूरा पृथ्वी पे
0: जहाँ जहाँ गया बाली उसको वही बहुत गुस्सा करके उसको मारने जाता था। तो फिर एक पर्वत पे वो रहता था जहाँ बाली को श्राप था ऋषियों का, उस पर्वत पे नहीं जा सकता था, इसलिए सुग्रीव को पूरा पृथ्वी का ज्ञान हो गया था कि कौन दिशा में क्या रहता है, कौन दिशा में, दिशाओं का ज्ञान। भगवान राम ने जब उनसे पूछा कि आपको इन दिशाओं का ज्ञान कैसा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को इन दिशाओं का ज्ञान इसलिए है कि मैं बाली की डर से रह नहीं पाता था एक जगह, और मैं जगह जगह भटकता था, सब दिशाओं का ज्ञान इसलिए ऐसे हो गया।
1: तो ये भी एक ऐसा संदेश है, अब हम सबको ये संदेश को प्राप्त होता है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, और यहाँ पर जब दुख है तो उन्होंने दुख के हितार्थ, और यानी कि मारा मार पृथ्वी पे चारों बगल घूमते फिरते रहे और उसमें कुछ ज्ञान प्राप्त किए, और वही ज्ञान को जो जाकर के सीता माँ के खोज में और प्रयोग किया गया।
0: सोचिए अगर सुग्रीव पर ये संकट ना आया होता तो उन्हें भूलोक का ज्ञान नहीं होता, और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है।
1: ये संदेश हुआ ना। राजेंद्र जी क्या बात है कि इस पे कुछ सुंदर सा और गीत रखेंगे आप?
0: जी जरूर, और इसके बाद एक छोटी सी बात और है, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी में हो, सदैव सकारात्मक रहे।
1: कि क्या पता अगले किसी सुख के तैयारी में हो, ये हुआ संदेश। राजेंद्र जी एक सुंदर सा और गीत के ओर बढ़िए,
0: एक सुंदर सा नगमा पेश करते हैं।

0: यकीन और दुआ नज़र नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो आप यहाँ से सुन रहे थे एक प्यारा सा भजन।
1: दोस्तों, ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जिसमें हम ये लक्ष्य लेकर आते हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में जो प्रकाश जल रहा है उसमें कोई ना कोई प्रकार से प्रकाश और आ सके। भाई राजेंद्र जी, जो आप सुंदर से और गीत को रखे, बड़ा सुंदर और संदेश उस गीत से हम सबको प्राप्त हुआ। पर हमारे शास्त्रों क्या कहते हैं कि जब सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। शास्त्रों इसके बारे में हम सबके क्या सुनाते हैं?
2: संजय जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम और ज्ञान भरा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र जो लिखे जाते हैं उनके अनुसार हर चीज शास्त्र में वही चीज लिखी जाती है जो काम की होती है और ज्ञान की होती है। तो शास्त्रों के अनुसार राम नाम ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और सभी देवताओं भी इसी में समाये हैं। जिसने राम नाम का जाप कर लिया वह अपना जीवन में तर जाता है। राम नाम ही महिमा, मनुष्य का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य की अनुभूतियों से भरा हुआ है। कभी मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तो कभी दुर्भाग्य की। सौभाग्य मनुष्य को निश्चित रूप से अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यह मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभव करते हैं कि दुर्भाग्य किसी के लिए पहाड़ के समान होता है तो किसी के लिए साधारण सी बात। यह जीवन के दो चापों के समान होता है। यदि एक का संतुलन बिगड़ जाए तो दूसरे को संतुलन रखने के लिए सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सिर्फ भगवान श्री राम का नाम। इस साधारण से नाम में असीम शक्ति छुपी है। इस नाम का सिर्फ स्वाद चखकर ही इसे बखान किया जा सकता है। एक सार्थक के नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों के नाम के महत्व को पहचाना। उन्होंने इस पूजनीय नाम की परख की और नामों के आगे लगने वाला चलन प्रारंभ किया। प्रत्येक परिवार में देखा जा सकता है कि बच्चे के जन्म राम के नाम के स्वर का होता है। राम में शिव, शिव में राम विद्यमान है। राम जी को शिव जी का महामंत्र माना गया है। राम सर्वमुक्त है। राम सभी की चेतना का सजीव नाम है। तो बताइए संजय जी, आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे
1: इसमें? तो बस यही प्रकाश डालना चाहूँगा कि भाई, दुनिया में वही शक उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है।
2: हाँ, हम लोग एक गीत की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा नगमा है।

0: तो शांता जी आप क्या कहते हैं कि राम कहानी के बारे में?
1: श्री राम भगवान को नाम को नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको उसके बारे में संदेश देने वाले हैं।
2: काहे काहे हम सब राम राम जस्टिस जहां हम या भेटायल कोई के तो हम लोग राम राम कला ओकर रहस्य उसमें ओकर अर्थ जो है वो भी हम जानना चाहते थे और हम खोज के आए हैं तो हम आए आप सबको भी बतलावे कहे के है राम
1: तो
2: राम।
1: ये राम राम तो बस ये हमारे समस्या जो है कि हम ऐसे जानते हैं कि हम हाथ जोड़ लेते हैं और राम राम कहते हैं, क्या वही है राम राम?
2: हाँ राम राम वही है और ये राम राम सिर्फ ना ऐसे ही कह दे, ऐसे राम राम कहना चाहिए कि जो प्रफुल्लित हो जाए रोमांचित हो जाए तब जान ले वो भी इन वर्किंग आवे है। और कहा के राम राम ताकि राम अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट में हैगा एर सेफन त्वेंतक्ष्त लेटर है सेफन त्वेंतक्ष्त अक्षर और आ जो है उत्वेद लेटर है और म जो एम है राम के वो है फैफन त्वेंतक्ष्त पे है तो ये सब जो साथ है जोड़िए तो आवे हैगा
3: 54
2: तो धले एक दफे जो बोलिए राम मतवेद फिर जब बोलिए राम तो त्वे मा
3: 54
2: आया है द वर्ड दैट साम होन दैट आह तो जैसे हम सब नॉर्मल माला जाप कर ला 108 नंबर के ऐसे दिल से जब कोई बोले कि राम राम तो धले एक माला जाप हो जाए।
1: भाई राजेंद्र जी आपने समझ गया कि राम राम का मतलब क्या है?
0: राम राम का मतलब बहुत ही अच्छा है, एकदम गहरा विषय है।
1: पर अभी तो आप हम सबको जो संदेश सुना रहे थे
0: जी,
1: अभी ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ा दवा है। पर अभी आप जो संदेश हम सबको दे रहे थे तो क्या उसमें कुछ और संदेश है कि बस वही थे?
0: नहीं, और बहुत संदेश है। जैसे कि राम नाम के बारे में तो बहुत कुछ संदेश रहता है। एक बार एक कुख्यात डाकू रत्नाकर नाम से प्रभावित हुए।
1: कौन डाकू?
0: रत्नाकर। रत्नाकर राम नाम से प्रभावित हुए और अंततः महर्षि वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए।
1: यानी कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को और निर्माण किए हैं,
0: जिन्होंने रामायण को लिखा है वाल्मीकि रामायण, वो पहले डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, वो डाकू थे। तो राम नाम की चैतन्य धारा से मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। यह नाम सर्वसमर्थ है। राम अपने भक्त को उसके हृदय की बास कर सौभाग्य प्रदान करते हैं।
1: विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो।
0: हाँ
1: ना, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाता है।
0: हाँ, लेकिन विचार
1: मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में रहती है।
0: यस, वेरी नाइस।
1: तो आप जैसे ये संदेश सुना रहे हैं कि श्री राम भगवान के, अभी आपने बताए कि रत्नाकर, ये तो मैं पहला बार सुना। हम सब तो ये कथन में कितने बार सुने थे कि वाल्मीकि जी, पर आज ये भी रख दिए आपने। और क्या संदेश है आपके ओर से राजेंद्र जी?
0: और दूसरा संदेश है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक श्री फल देने वाले राम नाम का ही है। इससे वधिक पशु पक्षी मनुष्य आदि तक तर जाते हैं। सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई ने अंततः यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कहा? क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में राम सबको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह नाम सबसे ज़्यादा सरल और सुरक्षित है। इसके जप से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस राम के जप के लिए आयु स्थान स्थिति जाति जैसे बाहरी आवरण की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर राम नाम का जाप किया जा सकता है।
1: ओ तो जैसे कि अभी शांता जी ने भी सुनाए कि अपने ओर से, और उन्होंने तो बस गणित में भी हम सबको इस बात को सुनाए। दोस्तों ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और आप जहाँ भी हो, दुनिया के कोई भी देश में ये कार्यक्रम को सुन रहे हो, तो सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि ज्योति का प्रकाश हम सब के लिए कुछ ना कुछ संदेश खोज खोज करके और लाते रहते हैं। कहावत है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है
0: दुख का ताला किसने लगाया है अगर सुख की चाबी ढूंढ रहा है।
1: तो राजेंद्र जी, अभी ने जैसे कि आपने बड़ा सुंदर रूप से और ये वृतांत को सुनाए हम सबको
0: जी,
1: और कुछ सुंदर गीत है कि हम सब आगे बात कर सकते हैं?
0: नहीं, अभी एक गीत रहेगा, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो गीत के बोल रघुनंदन मोहम्मद रफी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है।
4: इंद्र आश्रित पारिजात है

0: रघुनंदन, जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय सियाराम। बताइए शांता जी, अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं डच में?
1: डच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, यानी कि पछतावा हेत फरलीद कायनित मेर फरामदर, और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता। चिंता यानी कि तुकोम्स कायनित फोरोइत लेफन, और वर्तमान का आनंद लेने ही जीवन का सच्चा सुख है, यानी वर्तमान दुस फंदाख लेफन एनत हेदन न्यू इस हेत आलर बलंग रेक्स तो मोमेंट वन वत मैं न्यू दूत दैट वर्ड दान हेत फरलेद एंड फोर बरेद फॉर द तुकोम्स।
2: शांता जी, इतना सुंदर संदेश को हम सबको दिया है कि भाई राजेंद्र जी, ये संदेश तो सुन के बस ये ख्याल आता है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारी कर्मी ही हमारा भाग्य लिखता है। राजेंद्र जी, इस के बारे में आपका क्या कहना है?
0: हाँ, इसके बारे में हम एक सरल रूप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड सुनाते हैं कि पॉजिटिविटी कैसे होती है, कैसे लोग का भाग्य कैसे क्या होता है। तो सुनिए, एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था।
2: इमारत क्या चीज़ होता है राजेंद्र जी?
0: इमारत मतलब कोई बिल्डिंग,
2: और यानी कि कुछ बड़े बन रहा था,
0: कोई बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मकान। मकान छोटा रूप बोलते हैं, लेकिन इमारत मतलब कोई महल टाइप का बन रहा था। वहाँ रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़ कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और काफ़ी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज दिन देखने के एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा क्यों नहीं होती है?
2: गार्ड के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: गार्ड का मतलब जो रेल में सबसे पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, वो सिग्नल देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पीछे से ठीक है। तो रेल बहुत लंबा होता है, बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो आगे ड्राइवर को पीछे का कुछ पता ही नहीं रहता, तो पीछे से बताता है कि आगे ये पूरा ठीक, इधर से सब सही है, तो आप चलते रहो चलते रहो। तो एक कपड़ा उसके हाथ में होता है, लाल एक हरा, अगर उसने लाल का भी कपड़ा दिखा दिया तो वो पीछे देख सकता है उससे या तो वायरलेस से। तो वो कहता है कि लाल कपड़ा मतलब खतरा, तो रुको, और हरा मतलब चलते रहो, कोई बात नहीं,
2: चलते रहो गाड़ी।
0: हाँ, गाड़ी चलती रही। तो इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर एक खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आँखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं कभी अपने सवालों रंग के लिए, कभी अपने सांवले रंग, सांवले मतलब काला रंग, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, और कभी अपने कम मार्क्स, यानी इस एग्ज़ाम में जो नंबर मिलते हैं उसके लिए, कम जो मिले थे उसके लिए। कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। चील बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, और चिड़िया जो छोटे छोटे नीचे नीचे उड़ती है, तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं होती। क्यों नहीं होती?
2: क्योंकि उसमें वो ज्ञान नहीं है, वो अपना और ये इच्छा नहीं रखते कि मुझे भी वो चाहिए।
0: वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, उसके पास जो है उसी में मस्त रहती है, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं है।
2: जो है हमारे पास उसी में मगन रहो।
0: हाँ, मगर इंसान इंसान की ऊंची उड़ान देकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचे और खुश रहे, एक दूसरे की तुलना, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों नहीं, इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहें, तुलना से बचे, न किसी से ईर्ष्या न किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। बताइए संजय जी, अब आप इसके विषय में कुछ पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, कुछ पूछना कहना नहीं चाहूँगा राजेंद्र जी, क्योंकि इस कार्यक्रम से हमें भी कुछ ना कुछ सीख मिलता है, और जैसे कि आपने इतने सुंदर संदेश को सुनाते रहते हैं, तो ये छोटी यानी कि ये जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। यही हमें अच्छा लगता है कि आप हम सबको ये सुंदर सुंदर संदेश हम सबको सुनाते हैं। मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ कहने वाला है।
1: वाकई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो ऐसे है कि लोगों को भरपूर सम्मान देना, जैसे अभी राजेंद्र जी का सुना है ना, लोगों को भरपूर सम्मान देना, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, अधिकार तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका संस्कार वो है।
2: आपके संस्कार वो है। देखो संदेश अच्छा, रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं राजेंद्र जी,
0: जी,
2: और एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ हम सबको ये ज्ञान बढ़ते हैं। हमारे जो मैं देख रहा हूँ पनील के आगे आपने कुछ गीत को भी तैयार रखे हुए हैं, तो पहले गीत को सुना दीजिए, तब फिर आगे हम सब कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
0: मनवा

0: भज ले राम राम राम। भाई राजेंद्र जी, बड़ा सुंदर सा और गीत को आपने सुनाए। हम जो आज का हमारे जो विषय था कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, आज कितने संदेश हम सबको सुनाए आपने।
1: नहीं, हम तो चाहते हैं, और अगर आप सुनना चाहे तो हम सुनाना क्यों ना चाहे। तो एक साखी है द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सुनने का और हम सुनाने का। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे।
0: भगवान को ऐसा कहे।
1: वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। यानी संगत जी, हम चाहे कितने ही निपुण विद्वान, बुद्धिमान, महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम सतगुरु है। इसलिए पूरे सतगुरु की शरण में लेकर पूरे समर्पण भाव से उस पर भरोसा रखो तो सब ठीक हो सकता है।
0: सुंदर संदेश जो आपने सुनाए राजेंद्र जी।
1: जी,
0: आज यहाँ पर की जो संदेश है कि एक खूबसूरत सोच ना, एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी को करते हैं जो हासिल ना हो सकता है, हम यही में पड़े रहते हैं। आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में कुछ ज्ञान के बातें खोज खोज करके आपके लिए यहाँ रखते हैं, और हम सभी एक और गीत है, या इस बार मुझे अवसर है कुछ सुनाने को राजेंद्र जी।
1: आप थोड़ा सा सुना सकते हैं, इसके बाद हम गीत शुरू करेंगे।
0: चलो थोड़ा से तो सुनाने को कोशिश करेंगे राजेंद्र जी। एक मैंने गत दिनों इस वृतांत को सुने
1: जी।
0: इस वृतांत को हमने सुने कि एक हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होता है, 90 किलोमीटर के स्पीड से वो दौड़ते हैं, और शेर के रफ्तार 58 किलोमीटर स्पीड से होते हैं। इसके बावजूद अक्सर हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है वो शेर से कमजोर है। यही खौफ उसे बार बार क्या करवाते हैं, पीछे मुड़ करके और देखने को मजबूर करता है
1: जी।
0: और हिरन को हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाता है, इसीलिए आप खुद पर यकीन न रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने सपनों और लक्ष्य पर रहिए, कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
1: हाँ,
0: तो ये संदेश जो हम आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए रखे कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर यकीन रखिए।
1: हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत और ज्यादा बनानी चाहिए। तो इसलिए हिरन का शिकार इसीलिए हो जाता है कि हिरन यही सोचता है कि मुझे पे शेर ज़्यादा बलवान है, वो मेरे पे हिम्मत नहीं, जबकि वो ज़्यादा भाग सकता है। तो इसलिए हिम्मत हाँ, अगर रखेंगे तो बच सकते हैं।
0: तो और आगे बढ़ते चलना है, जो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं वो उसी का यानी कि हानि में आ जाता है।
1: हाँ,
0: हम एक सुंदर सा नगमा के ओर फिर बढ़ते हैं, और आगे कार्यक्रम इसी प्रकार से चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ और ज्ञान के बातें संदेश हम सब और लेकर के आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।
1: हाँ, जो गाने के बोल हैं वो है, मुझे अपनी शरण में ले ले राम।

0: सब ये सुंदर से गीत को सुने और आज का विषय जो कि है सुख में सब साथी दुख में ना कोई, तो इस बात पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं ना, कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। और एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ कौन मिलते हैं?
1: दुख में कोई एक ही मिलता है,
2: सारे साथी कम।
1: और जो एक दुख में मिलता है वही सोचो आपका साथी है। इसलिए अगर आपको साथी की पहचान करनी है तो आपको दुख के समय करनी होगी,
0: तभी सही साथी का पहचान आपको मिल पाएगा।
2: जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल है।
0: बढ़िया साथी, शांता जी ने कहा कि बढ़िया साथी मिलना, और यानी कि जो संकट में यानी कि जो दुख के घड़ी में आपका साथ दे वही साथी आपका अनमोल कहा जाता है। राजेंद्र जी, आज हम सब अभी धीरे धीरे और कार्यक्रम जो कि सूरीनाम के लिए कुछ कहने वाले हैं हम सब, पर शांता जी तो माइक्रोफोन के सामने अब खड़े हैं और उन्हें कुछ कहना है। शांता जी, क्या आप संदेश दे रहे हो? क्या है संदेश आपका?
2: शांता जी खड़े नहीं, शांता जी आराम से बैठी है
0: माइक्रोफोन के पास।
1: संदेश के लिए एकदम उत्साहित है, तो बताइए शांता जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
2: अभी राजेंद्र के मुख से भी हम सुने श्री भगवान कृष्ण के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, जीवन में क्या करना है तो रामायण से सीखिए, और जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत में से सीखिए, और जीवन कैसे जीना है ये श्रीमद् भगवद गीता से सीखिए।
0: अच्छा संदेश है, पर वैसे तो कार्यक्रम हमारा धार्मिक के ओर ज्यादा नहीं जाता है, नहीं, पर संदेश है कि उससे सीखने को। राजेंद्र जी, आज हम सब के लिए अभी तो

0: से बड़ा उनका नाम। मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी भारत देश से संदेश भेजे है सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी ने ये संदेश भेजे है कि भाई दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है। यानी कि दुनिया में सबसे भाग्यवान कौन है राजेंद्र जी?
1: दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो सुख में किसी के साथ, दुख में किसी के साथ रहता है।
0: नहीं, पर वो तो होगा वो तो होगा, पर सुरेंद्र चौधरी जी जो यहाँ संदेश को भेजे है कि दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है।
1: हाँ,
0: ना
1: जरूर।
0: अब कल रात्रि में हम सब क्या खाए?
1: खिचड़ी।
0: खिचड़ी बना कर स्पेशल वाला। पर अब ये हो जाता है कि जैसे संदेश भेजे उन्होंने कि जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है और बिस्तर के साथ नींद भी है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि धन के साथ धर्म भी है। तो भाई

0: सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपना संदेश को हम सब के लिए यहाँ भेजे। हम सब भी और कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, पर शांता जी कुछ लिख रहा है, हमें कुछ कहना थोड़ो है। हम सब जो गीत हम सब के लिए खोज कर को रखे हैं उन्होंने, पायो जी मैंने, वो सुना दो।
1: बहुत अच्छा गीत है पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो लता मंगेशकर।
0: क्योंकि इस गीत के बारे में आज फिर भी आपने वो यानी कि मीरा बाई जी ने इसी गीत को गाए थे ना।
1: जी जी जी जी

0: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: आप धन्य है।
0: तो बताइए शांता जी, आपने राम रतन धन कैसे पायो? सूरीनाम से जब आप यहाँ आए, पहले आप सूरीनाम में रहे होंगे ना?
1: मैं सूरीनाम में रही। हाँ।
0: तो आप कब वहाँ से आए? थोड़ा वहाँ का थोड़ा वृतांत बताइए शॉर्ट में। आपने राम रतन धन पायो जब आप नीदरलैंड आए, तो आपने राम रतन धन पायो की
1: उसी, हाँ, उसी राम रतन ने मेरी को यहाँ हॉलैंड में ले आया।
0: ओ तो बहुत अच्छा, बहुत मोई। संजय जी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे राम रतन धन की ओर।
2: राम रतन धन पायो, विश्वास और प्रेम। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। ये संदेश जो भाई शर्मा जी ने हम सब के लिए भेजे, तो भाई आपके संदेश को सुनाया गया, और जैसे कि राजेंद्र जी ने इस बात को पूछे कि हम कैसे राम रतन पाए, तो राजेंद्र जी कैसे बताऊं, पहले के परिस्थिति तो कुछ और था और अब के परिस्थिति कुछ और है,
0: तो वो सब राम रतन धन से ही हुआ है,
2: बगैर उसका नहीं हो पाता कुछ। इसी कारण हम सब यहाँ उपस्थित है, और आज सबसे बड़ा बात यह है कि हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के और ये कार्यक्रम को करते हैं कि दुनिया के हर एक कोना में लोग सुन सके, और कुछ ज्ञान के बातें इसमें रखा जाता है, कुछ संदेश इसमें रखा जाता है। यानी कि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश से हमारे जीवन के ज्योति में जो चल रहा है उसमें कोई प्रकार से प्रकाश आ सके। हम देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे और रखे हुए विवान, और उन्होंने एक संदेश भेजे है कि उसे इस कार्यक्रम को अच्छा लग रहा है। राजेंद्र जी,
0: क्या तो विवान अभी बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए एक हमें लगता है कि एक हमें बच्चों
2: कुछ करना चाहिए।
0: हाँ, तो बच्चों के लिए एक
2: शांता जी आपको क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लोग भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम।
2: हाँ जी, क्योंकि बच्चे ने व्हाट्सएप भेजे कि कार्यक्रम उसे अच्छा लग रहा है, तो चलो कुछ राजेंद्र जी क्या है हमारे बच्चों के लिए जो इस समय को कार्यक्रम को सुन रहे
0: बच्चे।

0: भाई, संजय जी आप बच्चों के बारे में कुछ बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम बता रहे थे, अब बताइए।
1: वैसे तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे सभी को तो यहाँ स्टूडियो में भी और गंवाने लगा, तो हम इस पे क्या और रख सकता हूँ। बस यही रखना चाहूँगा कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। हम बच्चों के लिए ये सुंदर संदेश, ये सुंदर सा गीत को रखे, पर क्या हमारा घड़ी का रफ्तार भी लगातार चल रहा है और आज हमारे सूरीनाम देश के जनता यानी कि सूरीनाम का गीत को रखेंगे आपकी नहीं?
0: हाँ, आज बहुत दिनों से हमने सूरीनाम के गीत का समय कम मिल रहा था, तो आज हमने समय निकाला तो जरूर सूरीनाम देश का आपका जो बहुत ही प्यारा सूरीनाम हमारा प्यारा देश गीत है उसको जरूर रखेंगे और एकदम रेडी है। अब हम चाहेंगे कि सब लोग इसको बड़े अच्छे से सुनें और इसका आनंद उठाएं।

0: और
1: भाई राजेंद्र जी आपने गाना भी गाना शुरू कर दिया तो भाई हाँ बोले है लखस्ताद से भाई गहार जी भी फोन करके बोले कम से कम हमार बारे में तनी से बोल दिए कि हमार शहर से यानी कि आम्स्टरडम से वो और कहते हैं कि ये बहुत और अच्छा लग रहा है उसके ये कार्यक्रम में। दोस्तों हम सूरीनाम के बारे में सूरीनाम का गीत को सुने तो पुराना ख्याल तो आ ही जाता है, पुराना ख्याल आ ही जाता तो शांता जी भी यहाँ पर बैठे हुए। शांता जी शायद आपको ख्याल आता होगा कि पहले और जा कर के वर्षा के टेम पे खेती में कैसे काम होता रहा, सब तो बुड़ जाता था कहीं काल के पर कहीं कहीं तो नहीं बुड़ते थे, तो आपको कुछ उसके बारे में अब ख्याल है कि भुलाई गए सब?
2: ना सभी ताजा ताजा याद है,
1: अबे ताजा ताजा याद है,
2: ताजा ताजा याद है। जब हम यहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं ना स्नेल वैक पे, तो हम ताकि यहाँ कैसे खेती बाड़ी होवे, तब ये सोचते हैं कि सूरीनाम में हमारे साथ कि पानी बरसे तो वहाँ चांटा हो जाए।
1: हाँ सब बुड़ जाते थे ना,
2: सब बुड़ जाए, जितना खेती बाड़ी रहे सब खाना सब डूब जाए।
3: ये तो बड़ा अच्छा है शांता जी की आपको सारी चीज याद है और आपने खेत में भी काम किया है, तो बहुत अच्छा है आपका।
2: बाकी हम लोग खाते तो हमारे बाप पोल्डर बना दे रहा, ओमेगो बोट ढर दे रहा,
1: तो वो तो मस्ती भी आप लोगों खूब कर रहे हैं।
2: बोट से हम लोग जाए खेल के जाए पाछे सौदा काटे, तो सौदा बोट पे ढाए तो फिर आवे घरे, तो घरे सब तैयारी होवे। तो पहले के जमाने में रहा कि एगो त्रक रहता जौन सब संझा के आवे सब सौदा उठाए के ले जाए तो बाजार ले जाए।
1: ओके हाँ ओके कहते थे क्या बोले कोपमान, यानी कि जो सब्जी इकट्ठा किन के और ले जा करके और इकट्ठा करके और ले जाते थे। तो पहले के वृतांत में ऐसे ऐसे बातें होते थे।
3: तो अभी वो वृतांत नहीं है क्या? वो
1: नहीं नहीं वो होता होगा पर हम लोग राम जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ
3: हम चाहेंगे एक बार इस प्रकार का वृतांत जो आप बता रहे हैं सूरीनाम देश जाके देखना चाहते हैं।
1: ये तो हम सब बात कर चुके हैं, बस हम लोग के जहाँ मौका मिले तो हम सब यहाँ से सूरीनाम से फिर उसके बाद में निकेरी जरूर पहुँचेंगे। हम देख रहे हैं टेलीफोन दोनों के दोनों साथ साथ में बज रहा है, पर हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर पहुँच चुके हैं धीरे धीरे, तो हम लोग तार भी नहीं उठा पा रहे।
3: कोई नहीं, हम उसके लिए एक गीत का लागी छोटी ना सनम गीत
1: चला दो।

0: में ये गाना को चला रहे हैं, पर और हमारे टेलीफोन पे कोई ना कोई हम लोग सबके नाम नहीं ले सकता है। मुफर्रा रामदीन जी जो बड़ा खुशी है और खुशी से ये कहते कि भाई मुझे ये ख्याल आ गया कि बुद्धू पासी यानी कि वेलखदाख बे के रहने वाले हैं और वो भी और इसी प्रकार से और जाकर के खेती आदि करते थे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहे कि जो राम रमनी यानी कि श्री राम जी का गीत को चलाया गया तो उन्हें रामलीला का याद आ गया। दोस्तों ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं और आशा यही है कि आपको अच्छा लगे होंगे हमारे कार्यक्रम में जो गीतों के सब खोज कर रखे हैं। तो शांता जी है हमारे कार्यक्रम के विषय को रखने वाले हैं और जो सुविचार के रखने वाले बबली जी है और राजेंद्र जी जो पनील के पीछे बैठे हुए है, मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा यही है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे होंगे और आप इंतजार करते रहना।
1: प्यारे पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है कि हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया हुआ होगा। आप सब आपके सेविका और सेवक संजय, राजेंद्र और शांता, धन्यवाद सुनने के लिए। आप अपना ख्याल रखना।
2: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों को सबको मेरा प्रेम और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल। धन्यवाद। शुभरात्रि।

0: क्या है, कैसा है ये दीवाना दोस्तों रिमिक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। और हम आगे के बढ़ते हैं, जब ये लड़का दीवाना होता है तो पर्दा में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है दोस्तों, आओ चला जाए इस सॉन्ग को हम सब प्यार से रेडियो के माध्यम से सुना जाए। ओनली रीमिक्स, और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है आशा भोसले के साथ में।
1: पर्दा हटा दो जरा मुख

और दोस्तों आज हम आप लोग को एक और सुनाते हैं और बॉलीवुड ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग हम आपको फिर सुनाते हैं।

door, dosto. Blijf mijn programma luisteren. Only Jhumo Nacho Gungunao. Remix Old in Gold. Jitne log ko original pasand hai, wo bhi hum jarur chalate hai. Lekin kitne log ke remix song bhi aur yani ke pasand hai. To aaj aap log ko hum Old in Gold remix song sunayenge. To remix song ke mood mein hai. To ab क्या है सुना जाए किशोर जी आपको क्या सुनाते हैं किशोर कुमार निखंती तख तख का हिंदी सॉन्ग्स रीमिक्स हम आप लोग को सुनाएंगे किशोर कुमार का आशा भोसले का ये सॉन्ग है

आए और आ भी आ जाना। और फूल की शहर में एक घर अपना है दोस्तों, उसके बाद हम भिन्न चलते ही आओ सुना जाए क्या लेकर हम आपके लिए आए हैं हमारे लवर्स के लिए।

और क्या हुआ तेरा वादा भी लेकर हम आप लोग को आएंगे, लेकिन क्या हुआ वादा से पहले जॉनी आपको और कुछ सुनाना चाहते हैं और आपको हमें यही आशा उम्मीद है। एक बैंड खून जेकर मैन से दर्ज ली ओक जो फिल खनी थे वात वात ऑफ दैट मोमेंट, जैसे हम यहाँ पे कूद कूद के और नाच नाच के खनिट करील मैन से एन येली उगदार है एन आल से दैट इज नाउ खनिट एर वन।

और ओ जब हम भी जवां होगे तुम भी जवां होगे तो पता नहीं चलेगा कि आप आम्स्टरडम में होगा या सूरीनाम में होगा। जब बचपन के प्यार जगते हैं और दोनों सोचते हैं जब हम दोनों जवां होगे तब मालूम नहीं कि हम कहां होगे, कोई रोटरडम में होगे, कोई आम्स्टरडम में, लेकिन कोई भी सूरीनाम भी हो सकता है दोस्तों। और हमारा एंड कहाँ होगा दोस्तों इसको भी किसी को पता नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा सॉन्ग से हम आप लोग को आज सेवा फिर से करते हैं।

क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। अब झूमो नाचो गाओ गुनगुनाओ जो भी चाहे और करो। देसी चिस्का अलीन बे रेडियो फाहुन और बेलीन बे रेडियो फाहुन खनिज बेस्ट लाइफ स्टार्स। इसके बाद और आगे हम चलते हैं।

शांति। तो दोस्तों हमारे उम्र के लोगों और दिल ना लगाना हमारे यारो, प्यार करना जरूर करना। तो हम चलते हैं एक आउट जोन की ओर, वो क्या है

0: और मुझे भी चलते जाना है। और दोस्तों नौखन लास्ट नंबर
1: कबूतर
0: और कबूतर जा के मतलब ना है कि हम चला जाएगा। अभी इसके बाद इस सॉन्ग के बाद में हम रेक्लाम चलाएंगे और रेक्लाम के बाद में दखान दलाइन उपमेन से दमोख यली खान बेले अप रेडियो फाहुन अप टेलीफोन नंबर 073-622-0777 मोगे यली खान बेले ओम अन नंबर आन द व्राग मा दन दू यली पास ना द रेक्लाम। पहले इस गाना को इस गीत को हम सुना जाए।

और वनिता विली के आवास में इस हॉट सॉट और चटनी सॉन्ग अपने सुना है आज हम शोका के मूड में हैं। तो हम चलते हैं संदेश उदीन एंड जवीता सिंह।

और संदेश शिवदीन सविता सिंह का आवास में ये चटनी सोका अपने सुना है। उसके बाद हम चलते हैं ईमेल मोर की ओर।

और इमाइल मोरी हॉट वन सौ का चटनी सौ का सॉन्ग से आज आप लोग को हम झुमाएंगे नचाएंगे गुनगुनाते रहो।

En beste luisteraars, aan hem सोका चटनी आपकी सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, एक और हो जाए, और वो कौन है? अब खनित एरफान में से

काला काला चश्मा लगैली। ये कुछ नई पाली सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, और उसके बाद हम आप लोग को और कुछ सुनाएंगे।

और ये काला काला मेरे ख्याल से आंखें पे और चश्मा लगैली, ये नेपाली जोंग है दोस्तों। कुछ समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका जोंग है, ढंग है, हमारा बॉलीवुड सॉन्ग के स्टाइल है। तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे, हम और चलते हैं, एक रीमेक्स हो जाए नेपाली का जोंग।

सो कुछ रिमिक सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते ही रहेंगे और उसके बाद हम चलते हैं एक गीत की ओर और वो है सुशांत काशी सारंगी के वांछित हो रहा है और क्या है आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है लेकिन पूरा नेपाली सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे।

और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद हम अगला गीत की ओर जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को नेपाली सॉन्ग हिट ऑफ मशहूर फन तैयार तक नेपाली सॉन्ग्स और मूवी सॉन्ग्स भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये सब गीत जो है और बहुत अच्छे से गाया हुआ है, आओ हम सब मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों आपको हमारा यही आशा है कि आपको ये नेपाली सॉन्ग भी आपको अच्छा लगेगी। आप जानते हैं बै रेडियो फाहन हैप टू आलस इन हेस, कभी तो नेपाली होता है तो कभी भोजपुरी सॉन्ग होता है, तो कभी भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशस के होता है, तो कभी बैठक गाना होता है, तो कभी बॉलीवुड ऑल इज गोल्ड सॉन्ग, और कभी रीमिक्स तो कभी नया सॉन्ग। दिस वी हैव आलस इन हेस मेंसी एंड दैट इज द क्वालिटी फन ऑन सी रेडियो फन। आओ एक और चला जाए नगर नंजी नालाल, नगर नंजी नालाल।

और नागर नंजी नालाल अदिच्या गदवी का ये जोंग है। हमारे दोस्तों नोगमाउस वै जैन फॉन अलस इन हैस एंड दैट इज अलीन बे रेडियो फाहुन के पास हर एक रकम के गीत आप लोग सुन सकते हैं जैसे ये भी।

और माया तमाया हो दोस्तों, और माया तमाया के बाद तो हम चलते हैं कुछ डांस गीत की ओर, जो न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है ट्वेई दैसन फैवन सीवन तक। इसका मतलब तो हमारा समझ में नहीं आते है, लेकिन यहाँ लिखल है न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग ट्वेई दैसन फैवन सीवन तक। सलको पटको सर को पटको दोस्तों, आओ सुना जाए इसका मतलब क्या है।

और दोस्तों कुछ नेपाली सॉन्ग यहाँ से हम चलाते हैं और सुना जाए लाई भरी लाई।

और लाल परी हो लाल परी। उसके बाद हम और कहां जाते हैं, एक सॉन्ग और हो जाए।

मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन, और आप हैं मेरे साथ फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आता हूं एक प्रोग्राम। आई एम श्योर आप उसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कार में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, जहां पे भी हो, बस यही उम्मीद रहती है कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं और सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, दिल कनेक्शन यानी कि दिलों को दिलों से कनेक्ट करने की एक शुरुआत। तो आपका प्रोग्राम है, आप जो इसमें चाहें, जो सॉन्ग आपको पसंद हो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आपका वो सॉन्ग यहाँ पे प्ले करना पसंद करूँगा। तो आप बेझिझक बिंदास मुझ तक एक अपना छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, मैसेज कहाँ पे भेजेंगे? उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोनों ही पेजेस को पहुँचने के लिए आपको सिर्फ एक ही आईडी यूज करनी है, जो है आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने मैसेजेस भेजिए, बताइए मुझे आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।

सामने फिल्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने दोस्त अपने होस्ट पवन के साथ। प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों अगर इस प्रोग्राम के लिए आपकी कुछ फरमाइशें हैं, अगर आप कोई स्पेशल सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो मैं आपके नाम से प्ले करूं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है कि आप फेसबुक पे जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पर मुझे सर्च कीजिए आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। मेरे पेज पर जाकर मुझे एक मैसेज कीजिए और बताइए वो कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपका इस प्रोग्राम के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे इसी फेसबुक पेज पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आप आरजे पवन ऑफिशियल को सर्च कीजिए, मेरे पेज पे जाइए और मुझे अपना मैसेज कीजिए। तो दोस्तों जब तक मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं, तब तक सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

दोस्तों फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने होस्ट अपने दोस्त पवन के साथ और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में आप सुनेंगे कुछ खबरें साथ ही साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स। दोस्तों अगर आप हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहते हैं रेडियो फाहून को ये मौका देना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस के फोन नंबर पर जो है 07032207707 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@fahunfm.nl या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि है न्यूटन स्ट्रात 25 2562 KC देन हाग में। तो दोस्तों ब्रेक के बाद मैं आपके पास जल्द ही वापस आता हूं। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर।

फाउन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन शर्मा। मेरे साथ सुनते रहिए ये प्रोग्राम जो मैं लेके आया हूं खास आपके लिए, ओनली ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन, एंड मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे पवन।

फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन। दोस्तों, प्रोग्राम है दिल कनेक्शन। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ और मैं आपको सुनवा रहा हूं यहां पर कुछ शानदार सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए अपने आप को एंटरटेन।

मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पवन, और आप हैं मेरे साथ फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आता हूं एक प्रोग्राम। आई एम श्योर आप उसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कार में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, जहां पे भी हो। बस यही उम्मीद रहती है कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं और सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, दिल कनेक्शन यानी कि दिलों को दिलों से कनेक्ट करने की एक शुरुआत। तो आपका प्रोग्राम है, आप जो इसमें चाहें, जो सॉन्ग आपको पसंद हो वो आप मुझे

बता सकते हैं। मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आपका वो सॉन्ग यहाँ पे प्ले करना पसंद करूँगा। तो आप बेझिझक बिंदास मुझ तक एक अपना छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, मैसेज कहाँ पे भेजेंगे? उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोनों ही पेजेस को पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही आईडी यूज करनी है, जो है आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने मैसेजेस भेजिए, बताइए मुझे आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे।

दोस्तों, फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने होस्ट अपने दोस्त पवन के साथ और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, रेडियो फाहून को ये मौका देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस के फोन नंबर पर जो है 07036220777, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@fahoonfm.nl, या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि है न्यूटन स्ट्रैट 25 2562 KC दनहाग में।

दोस्तों, इस शानदार सुपर हिट सॉन्ग के बाद अब वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी दिन, और तब तक के लिए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार की देखभाल करें, और सबसे ज़रूरी होता है ज़िंदगी में खुश रहना। तो दोस्तों, कीप लाफिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप लिसनिंग म्यूज़िक एंड कीप कनेक्टेड विद फाहून FM हिंदुस्तानी रेडियो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं बेस्ट मनोरंजन। और यही सिलसिला मैं जारी रखूंगा अपने आने वाले प्रोग्राम में। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए आपका ये होस्ट, आपका ये दोस्त आपसे कहता है बाय बाय।

अफ्रीका हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकासानी

मिस्टर तसीफ बक्स, और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसरिया एक्स कर्म डॉन।

0: परिवार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिंग मोक्सी है। और मिसिंग मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉलिंग में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।
1: The world's number one soca chutney band. Your Dilly Nedan, bigging up the boy DJ Rahman Entertainment to the world.

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी। मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कर्मा अनु ताकि मिनो लोबियू, हा सुमा ताकि मिनो लोबियू, मिलो बयू थ्रू।

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या बात है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सर तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग दिया है दोस्तों। डांस कर रहा, लेट्स डांस।

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नाडिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

0: महा प्रोडक्शंस।
1: लेग डाउन मी नानी, कार्लेस ड्राइवर द्रौपदी के आवाज में आप सुनेंगे।
0: My
1: Let's dance।

अब की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहरी सिविल शास्त्र के बात है। जब ये सिनांदिस आया और उसी समय पर एक बार बना था डिस्ट्रिक्ट पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पटा पटा।

0: मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वादा धड़बड़ घिर ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मैं राही भटकने वाला हूँ क्या जाने मटवाला हूँ, माइटी मुकेश के आवाज में।

मेरा ही भटकने वाला हो, कोई क्या जाने मतवाला हो। भाईटी मुकेश की आवाज़ में भी ये गीत को सुन रहे थे। आइटम जारी है दोस्तों, या प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है, और अब की बार फिल्म चेहल तीफ का एक गीत है, रुला के गया सपना मेरा, नाइटिंगेल लता की आवाज़ में।

हंसी एक नखमे, हंसी के नखमे गाते रहो, हंसी के नखमे गाते रहो, वक्त निकाल कर, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो। क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, जब तुम मेरा साथ न दे सको।

खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

क्या हुआ तेरा वादा डर भर गिर ब्रोकनहार सॉन्ग के प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग चलेगा किशोर कुमार के आवाज में आप सुनेंगे।

आरंभ होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र के प्रोग्राम में आज शाम को मैं रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। रणबीर कपूर, पिता का नाम ऋषि कपूर और माता का नाम नीटू सिंह कपूर, पैदा हुआ 28 सितंबर 1988 मुंबई इंडिया में। शादी किया आलिया भट्ट के साथ यार तुई जैसन तुई में। रणबीर कपूर के घर पर हमेशा प्रॉब्लम झगड़ा होते रहते हैं पिता माता से, तो इसलिए रणबीर कपूर पिता से बहुत दूर रहता था, पिता से बहुत कम संबंध था रणबीर कपूर से। लेकिन बात यह हुआ कि रणबीर कपूर पिता के साथ असिस्टेंट फिल्म आ अब लौट चले में काम किया, और उसके बाद ये दोनों का प्यार फिर मिल गया और बाप बेटा दोनों फिर प्यार से जीते थे। रणबीर कपूर फिल्म शौर्या में असिस्टेंट का काम किया, और असिस्टेंट का काम किया बनिया लीला के साथ असिस्टेंट का काम किया। उसके बाद पहला फिल्म तुई जैसन सीफ में फिल्म शौर्या में आया। तुईसन दैरतिंग का फिल्म ये जवानी है दीवानी, ये इंडिया बॉलीवुड का एक फिल्म था जो सबसे ज़्यादा नफा अंदर लाया, सबसे ज़्यादा पैसा अंदर लाया। रणबीर कपूर का एक फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म बर्फी जो भी एक हिट फिल्म निकला उसी फिल्म का सॉन्ग आप सुनेंगे।

रणबीर कपूर, रणबीर का कपूर का कहना हुआ कि उसका फिल्म जो ट्वीर सिंह दैरती में बना, ये जवानी है दीवानी, ये सबसे बड़ा फिल्म जो आतिल को बनाया इस फिल्म है। उसके बाद फिल्म रंजीता, वो भी एक बड़ा हिट फिल्म था जिसमें बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, जैसे कि अजय देवगन, नाना पाटेकर, अर्जुन रामफल और कतरीना कैफ। रणबीर कपूर दोस्तों, एक कपूर परिवार, कपूर का फिल्म दुनिया का बड़ा परिवार कपूर का एक लाइन सुन जैसे हम कहते हैं, तो ऋषि कपूर फिल्म एक्टर था पिता, माता भी फिल्म एक्ट्रेस था। अब रणबीर कपूर इंडिया बॉलीवुड का एक टॉप एक्टर है। बात यह है दोस्तों कि संजय दत्त एक फेस था, एक त्यौहार था, एक पार्टी था, तो वहाँ पर रणबीर कपूर बैठा था और संजय दत्त आया अंदर। फिर रणबीर कपूर को कहा कि आपका चाल स्वभाव जैसे लगता है, तो आप एक्टर का कामिल नहीं हो, एक मानल का रोल, एक मर्द का रोल आप नहीं अच्छी तरह से अदा कर रहते हैं और नहीं कर पाएंगे। तो रणबीर कपूर को इस बात से गुस्सा हुआ दोस्तों, और हमेशा जब रणबीर कपूर को प्रॉब्लम होते थे तो पिता के पास जाते थे ऋषि कपूर के पास, तो ऋषि कपूर ने जाकर बातचीत किया संजय दत्त से और वहाँ से फिर आपस में लोग मिल गया। लेकिन एक दूसरा बात और है, एक पार्टी, एक क्लब में पार्टी था और वहाँ पर सलमान खान बैठा हुआ था और रणबीर कपूर अभी फिल्म में काम नहीं करते थे, लेकिन पिता एक पॉपुलर एक्टर था तो इसलिए रणबीर कपूर जहाँ जाते थे तो वहाँ बड़े बनकर बैठे थे और बड़ा बड़ा बात करते थे। तो बात क्या हुआ दोस्तों, रणबीर कपूर और सलमान खान दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सलमान खान रणबीर कपूर को एक लपर एक झापड़ मारा दोस्तों। तो रणबीर कपूर तुरंत घर पर गया, पिता से कहा कि देखो इसी से बात हुआ। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के साथ तुरंत गया सलमान खान के घर पर और सलमान खान से कहा आपने क्या किया। सलमान खान ने कहा भाई ऋषि जी, मैं नहीं जानते थे कि आपका बेटा है। तुरंत पकड़ कर रणबीर कपूर को गले लगाया और कहा कि आप मेरा बेटा हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए कि बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो फिल्म एक्टर का परिवार होते हैं तो जहाँ जाते हैं तो अपन हड़ताल करते थे, और वैसे भी संजय दत्त का चाल स्वभाव जो है तो आप जानते हैं किस तरह से। एक सॉन्ग हम सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार, रणबीर कपूर का फिल्म।

रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का रिलासी या प्यार मोहब्बत था दीपिका के साथ, उसके बाद कतरीना कैफ के साथ 6 साल तक ये दोनों साथ थे और बड़े बड़े फिल्मों जैसे ने जो काम किया, जैसे कि फिल्म रॉकस्टार, बर्फी, रंजीता, ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म सवारिया, फिल्म कहानी, फिल्म रॉकस्टार, फिल्म बर्फी और फिल्म संजू में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रणबीर कपूर का बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल दोस्तों, और ये आन फूडर है ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब का। और वैसे तो रणबीर कपूर दोनासी स्कैंकिंग देता है मिली और खानी शास्त्री को, बहुत से स्कैंकिंग देता है। रणबीर कपूर मुंबई में रहता है अपन बीबी आलिया भट्ट के साथ दोस्तों। और यहाँ तक था रणबीर कपूर का छोटी सी कहानी।

0: तारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन इंसाइड पर आप चुने ड्रीम गर्ल, ये सभी ड्रीम गर्ल के लिए
1: दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

तो हमारे साथियों यहाँ तक का आप सुने श्रीमान राजकुमार रॉली मोहन सुनाम से अपनी समय वक्त लेकर और हम लोग के ये शुभ संदेश दिए। कौन सा शुभ संदेश? यही है सुनाम के हालात के बारे में ना।

0: वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देव सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो का सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज फिर हम सब एक बार स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं, और स्टूडियो में साथ में जो हमारा आज साथ दे रहे हैं तो विवान है, विवान जो यंग के लिए कुछ कहेंगे। तो दोस्तों, शांता भी स्टूडियो में है, और अभी जैसे कि लग रहा है कि विवान ने अभी थोड़ा से नर्वस है और शायद अभी बाद में कुछ कहने वाले हैं। तो शांता जी, फिर उसके बाद में फिर राजेंद्र जी, और हम सब कार्यक्रम को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान। हाँ सुनने वालों, आपको सेविका शांता की तरफ से एक बार फिर स्वागत कहती हूँ, और मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम। और आपको यहाँ से हम स्वागत करते हैं ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी हम फिर उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में, सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे जो खोजी दल है,
0: खोजी दल
2: कुछ ना कुछ खोज के लाते थे। इस बार खोज के लाए पंचमुखी हनुमान जी की कथा, तो उसी पंचमुखी हनुमान जी की कथा को सब लोग सुनेंगे, और मुझे लगता है कि सबको बड़ी अच्छी लगेगी। और बने रहिए दो घंटे तक हमारे साथ, बीच बीच में बहुत सारे हनुमान जी के भजन और इस प्रकार से अलग से रहेगा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहने वाला है, आशा करूँगा कि सबको पूर्ण रूप से सब लोग सुने, और काफ़ी बड़ा विषय है और सब सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कही दिए है कि आज का विषय पंचमुखी हनुमान, तो शांता जी आपसे जब अगर पूछा जाए कि आपको पता है किस प्रकार कैसे लग रहा है, कैसे वो हम पहचानेंगे पंचमुखी हनुमान?
1: अभी तो उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, और जो हमसे हमने सुना पिछले सप्ताह कि आज हमारा पंचमुखी के जानकारी में हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो मैं भी बहुत बेचैन हूँ सुनने के लिए, साथ ही साथ हमारे श्रोतागण भी बेचैन है सुनने के लिए। तो हम वैसे सुनते रहेंगे क्या होगा आगे में।
0: तो अभी बारे में अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं, देखते हैं। विवान भी आज हमारे साथ स्टूडियो में है, और विवान अगर आपसे पूछा जाए कि हु सीट द बेल्ट फॉर पंचमुखी हनुमान, वेट जाय दैट।
3: Nee, dat weet ik nog niet. Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nog nooit gezien?
3: Nee.
0: Toh, dosto, aisa kyu na Rajender ji? Kyu na hum pahle jo hamare, jo sunne wale hai, jo tayar ho rahe hai abhi ye karikram ko sunne ko, jise abhi man mein thora sa udaas hai, क्यों ना हम पहले उनके लिए गीत चला देते हर सप्ताह की तरह, तो फिर हम सब विषय की ओर छलांग लगा लेंगे।
2: हाँ, जरूर है, जरूरी है कि उदासी मन नहीं रहना चाहिए। अगर मन उदासी रहेगा तो इतना इंटरेस्टिंग विषय को कैसे वो पकड़ पाएंगे,
0: वही बात।
2: क्यों ना पहले उन लोगों के लिए मन को पहले उदासी से दूर किए जाए।

0: काहे को डरे उदासी मन काहे को डरे। तो राजेंद्र जी, आज का विषय जैसे कि रखा गया है कि पंचमुखी हनुमान, हमारे सभी सुनने वालों इस समय उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान जो विवान ने अभी कहा कि वो कभी नहीं देखा है, शांता जी ने कहा कि हमें नहीं मालूम है उसके बारे में, तो हमें आप क्या सुनाने वाले हैं कुछ उसके बारे में। पहले तो ये बताओ कि जैसे हम सब कहीं मंदिर आदि गए तो वहां कैसे पहचानेंगे पंचमुखी हनुमान।
1: पंचमुखी हनुमान यानी पांच मुंह, जैसे एक मुंह बीच में दो इस तरफ, तो जो बनाई रहेगा तो पंचमुखी पहचानना बड़ा सरल है। पांच मुख तो पंचमुखी हो गया। हाँ,
0: तो शांता जी आपने समझ गया?
2: हाँ, हमने समझ गया। ऐसा जैसे कि विष्णु भगवान के सहस्त्र रूप
0: इसी प्रकार से उसमें
1: तो सहस्त्र नाम,
0: हाँ, तो उसमें ढेर सारे मुख होते हैं और इसमें पांच मुख के साथ होते हैं
2: जी।
0: तो राजेंद्र जी, ये तो समझ में आ ही गया है, तो आगे इसके बारे में हम सबको जरूर कुछ सुनाइए, क्योंकि आज मुझे पता चला है, सुबह मैं देख रहा था ना
1: जी
0: व्हाट्सएप बरख पे कि हमारे शांता जी ने ज्योति का प्रकाश पे और कितने सुंदर सुंदर हनुमान जी का गीतों का और पिटारा से भर के लाए, तो वो भी सुनाना है
1: जरूर।
0: तो देखा जाए कि पंचमुखी हनुमान जिसके बारे में हम सब आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्या आप सुनाने वाले हैं हम सबको, कुछ सुनाइए।
1: जय श्री सीताराम मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी की कथा श्रवण करेंगे और इस कथा को बड़े प्यार से और दिल से सुनेंगे ताकि समझ पाएँ, और जब समझेंगे तो उनके मन में उतर भी जाएगी। तो लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला, अंततः मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, मद जानी ला
0: ना, नहीं
1: घमंड,
0: घमंड
1: जाने,
0: हाँ घमंड तो जानते
1: हाँ। तो राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया।
0: स्ट्रेस में आ गया
1: हाँ। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकेयी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण के दो भाई पाताल में बसे थे, अहिरावण और महिरावण।
0: तो राजेंद्र जी, पाताल किसको कहते हैं?
1: पाताल कहते हैं जो हमारी जो जमीन है इसके नीचे वाले जो हिस्सा है,
0: नीचे
1: इस धरती से नीचे वाला।
0: तो पृथ्वी पाताल और आकाश ना,
1: आकाश पाताल
0: ऐसा होता है
1: तभी, हाँ ऐसा होता है। तो उन्होंने उनको याद दिलाई तो रावण को याद आया कि यहाँ दोनों तो उसके बचपन के मित्र भी रहे हैं। तो लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। जब रावण लंका का राजा बना तो उनको याद भूल ही गया था कि कोई और भी है। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोना के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। वही कामाख्या माता जो उड़ीसा में रहे, उसके परम भक्त थे वो। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने में विभीषण चिंता में पड़ गए।
0: विभीषण जी चिंता में पड़ गए।
1: विभीषण जाने लगा कौन रहे?
0: रावण का
1: छोटा भाई। हाँ,
0: तो रावण का छोटा भाई चिंता में पड़ गए
1: क्योंकि वो राम की सेना में आ गए थे ना। राम के साथ आ गए थे विभीषण।
0: हाँ,
1: तो वो फिर वहाँ का सारा
2: भेद बता दी।
1: हाँ,
0: ओ ऐसा
1: एक चाहे रखे ऐसा ना।
0: तो क्यों ना पहले हम एक, क्योंकि अब तो हनुमान जी का वृतांत धीरे धीरे आने वाले हैं, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं
1: जरूर,
0: और देखते हैं शांता जी कौन सा गीत हम सबके लिए खोज करके रखे हुए हैं।
1: हाँ।

0: हे महावीर करो कल्याण, तो जरूर महावीर कल्याण करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर लगा कि इससे इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ ही वे अपने भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। राम लक्ष्मण की कुटिया कहाँ पे बनी थी?
1: आपने कहा पर मैंने मेरा बटन ऑन नहीं किया तो मैं क्यों कहूँ?
0: तो चाहे थोड़ा ध्यान दे कि राम लक्ष्मण की जो कुटिया बनी थी सुबेल पर्वत पर बनी थी, लंका में सुबेल पर्वत पे बनी थी। हनुमान जी ने भगवान राम जी की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र या असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था।
2: अच्छा, तो उस समय पे भी अपने जगह
0: हाँ
2: प्रबंध किया जाता है?
0: हाँ, कर रहा है।
2: अच्छा,
0: अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रही। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। हाँ। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए।
2: अच्छा,
0: विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। तो विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही निकुम्भला नगर पहुंच गए।
2: हनुमान जी पक्षी के रूप धारण कर लिए?
0: हाँ, निकुम्भला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना।
2: अच्छा।
0: कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की वार्ता से ही बजरंग बलि को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे।
2: तो कबूतर जी अगर कबूतर को नहीं सुनता बात करने के लिए तो हनुमान जी को शायद पता नहीं चलता।
0: हाँ, हनुमान जी को पता चलता लेकिन थोड़ा टाइम लगता, लेकिन यहां से डायरेक्ट पता चल गया।
3: यानी कि हनुमान जी कबूतर चिड़िया के रूप धारण किया,
0: चिड़िया का रूप धारण किया,
3: ऐसा
0: पक्षी रूप धारण किया और कबूतर कबूतरी बात कर रहे थे वहां। तो हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर बानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया।
2: अच्छा,
3: आधा शरीर बानर का आधा शरीर मछली,
0: मछली का
3: बानर बोले तो
0: बंदर,
3: बंदर
0: मंकी,
3: मंकी और आधा शरीर मछली का,
0: मछली फिश।
3: ओ ऐसा।
0: हाँ, वो क्योंकि उसकी माता मछली थी और पिता हनुमान ही थे, तो इसलिए वो उस समय की वो दूसरा विषय है। जब लंका से हनुमान जी लंका पे गए थे, उस समय जब लंका से उड़ रहे थे तो उस समय उनके शरीर से पसीना का बूंद टपकी और मछली खा गई, तो उसी से वो पुत्र पैदा हो गया। हाँ,

0: बजरंग बली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया। हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके।
1: पर राजेंद्र जी, इस बात को मुझे थोड़ा चिंतन हो गया।
0: कौन से बात?
1: इस बात को मुझे यह हुआ कि विवान, आपने भी रामायण देखे हैं। रामायण देखे तो ये जो वानर रूप और मछली, तो उसका उसको आपने देखे रामायण में कि नहीं?
2: हाँ।
1: उसका नाम, उस नाम क्या था?
2: पता नहीं,
1: तो शायद अभी हम सबको सुनने को मिलेंगे।
0: हाँ, हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ।
3: अच्छा।
0: और एक मछली से पैदा हुआ हूँ।
1: ये हुआ ना बात।
0: मेरा नाम है मकर ध्वज।
1: मकर ध्वज।
0: हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गई, वह वीर की बात सुनने लगी। मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीना के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला था, वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकर ध्वज को बताया कि वही हनुमान है। उन्होंने बोला, मैं ही हनुमान हूँ।
1: तो वहाँ पता चला कि उन्हीं का बेटा है।
0: हाँ, मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गला लगा लिया और वहाँ आने का कारण बताया, पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो।
3: तो वो पुत्र जो था वो हनुमान जी की तरह बलशाली था।
0: हाँ, तो बलशाली होगा नहीं, वो पिता बलशाली रहे तो पुत्र भी तो बलशाली।
3: इसलिए हाँ, तो इसलिए उन दोनों में इतना ही जंग चला।
0: हाँ, मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं, उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का बेस धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए।
1: किसका बेस राजेंद्र जी?
0: मधुमक्खी,
1: वो छोटा
0: शहद जो बनाता है।
1: हाँ,
0: बी।
1: ओ, हनी बी।
0: हाँ,
1: होनिंग बी।
0: होनिंग बी,
1: उसका रूप धर लिया।
0: हाँ, हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं?
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना एक शांता का पिटारा सा दूसरा गीत चला देते हैं।
0: जरूर,
1: क्योंकि ये अब तो समस्या गर्म होने लगा है। शांता जी,
0: विशाल होने लगा है।

0: जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का मेरा नाम। बताइए शांता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: हाँ, गीत से पहले आपने कहा कि हनुमान जी मधुमक्खी के रूप धारण कर ली।
0: हाँ
1: हाँ, तो उस पर मुझे ये याद आ गई हनुमान चालीसा के एक चौपाई, सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म जाने की छोटा से छोटा और विकट जाने बड़ा से बड़ा,
2: बड़ा से बड़ा।
1: हाँ, तो ये मुझे याद आ गई, तो हमने कहा लगे हाथ जरूर से सुना दूं, क्योंकि हनुमान चालीसा जो निचोड़ है आप उसे जरूर से पढ़े और उसे समझे, बहुत आनंद मिलेगा।
2: तो राजेंद्र जी, अब शांता जी ने कुछ सुना ही दिया तो मेरा दिल में कुछ खौल रहा है, बता दे संजय जी।
0: जरूर,
2: तो कहने को तो मन है।
1: हाँ, तो लगे हाथे बता दो, वादा वादा क्यों?
2: क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का चौपाई। राजेंद्र जी, ऐसा हुआ क्योंकि ये तो व्यक्तिगत बात हो जाए ना शांता जी।
1: अभी आपने शुरू नहीं की तो हमने बता ही पाएंगे कि व्यक्तिगत है या कैसे।
2: ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक बार मेरे साथ एक समस्या हुआ। समस्या हुआ, हम सब काम से गए वहाँ चकिया। चेखिया में तो वो नेचर पार्क है ना, वो बड़ी बड़ी जंगल है और वो पहाड़ है।
1: अच्छा,
0: वो चकिया में।
2: चकिया में तो वहाँ हम सब गए काम से वहाँ, और कहते सर्वाइवल करें। तो सर्वाइवल करने को गए राजेंद्र जी वहाँ, तो हम सबको अब कुछ खाना पीना हो रहा था, खाना पीने के बाद और बोले अब चलो, क्योंकि ये गोरे लोग कार्यक्रम बनाता है, प्रोग्रामा बनावे बढ़िया। तो हम लोग के बैठाए कार में और ले जाकर अंधेरा रास्ता में, काफ़ी दूर अंधेरा रास्ता में रोक दिया कार।
1: अच्छा,
2: अब कार रोक दिया तो मैं जब देख रहा हूँ बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा,
1: गुप्त अंधेरा,
2: गुप्त अंधेरा,
0: गुप्त नहीं गुप्त।
2: हाँ, एकदम काला, एकदम अंधेरा। राजेंद्र जी, वो समस्या तो देखकर तभी से डर लगने लगा था, तो उन्होंने अब सिर से लगा दिया एक लाइट
1: जी,
2: और एक एक का और निकाल निकाल करके कार में से ले जाते, बोले ले ये रास्ते से जाना, आपको फॉलो करना है, जब तलक पायल, पायल बोले ना, जब तलक पायल नहीं देगा घूमने के आपको मोड़ना है, तब तलक आपको जाना है। तो मैं तो खुद को बड़ा ये नहीं कहना चाहूँगा कि बहादुर हूँ, पर उस समय डर लग रहा था
1: जी।
2: और वो सबके ना कि दो दो के साथ, एक एक
1: एक एक,
0: हाँ। एक एक के साथ क्या करना था?
2: वो चलना है
0: अंधेरे में।
2: हाँ, अंधेरा में सिर्फ एक लाइट सिर से लगा दिया है और चलना है, और फासला 5 मिनट का। अब जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी जाना है, तो मुझे इतना डर लग रहा था, तो फिर भी सिर से लगा करके लाइट जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ दूसरा वाला दिखता नहीं, पांच, क्योंकि 5 मिनट के फासला है। तो उस दिन मुझे पता चला ये हनुमान चालीसा का 24वां श्लोक का।
0: जब पता चला
2: तब उस दिन मुझे 24वां श्लोक ये बड़ा बढ़िया से पता चल गया, क्योंकि हम चल रहे अंधेरा है, और अंधेरा में बस सिर्फ वही याद आ रहा है कि 24वां श्लोक। शांता जी, आपको पता कौन है हनुमान चालीसा में?
1: भूत पिशाच।
2: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। अब हम चल रहे ऐसे, चलते चलते जा रहे, और आगे में जब चलते जा रहे तो देखते हैं पत्थर का बना हुआ ना, तो पत्थर का बना हुआ, तो और करीब जब जाते तो देखते हैं वहाँ वो कब्रिस्तान है।
1: वाकई में?
2: हाँ, वाकई में कब्रिस्तान, जर्मन का जो तोयडेवेरटोलो का कब्रिस्तान वहाँ बना। अब वहाँ मुझे बस यही याद था कि हनुमान जी कुछ बचाओ। तो यही एक वृतांत है जो हम उस दिन, और जा करके पता चल गया कि उस दिन से कि 24वां श्लोक हनुमान चालीसा का
1: आज तक कंठस्थ हो गया,
2: एकदम कंठस्थ हो गया शांता जी।
1: और मुझे ये बात भी पता लगा कि चलते चलते चलते रहना, कि चलते चलने का नाम जिंदगी, रुकने का नाम। आज की प्रोग्राम में हमने ये भी गीत सुने। हाँ,
0: क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ें और इसके बाद आगे का वृतांत सुनाएंगे।

0: राजेंद्र जी, सुंदर गीत जो चलाए आपने और ये गीत को सुन करके हम सभी यहाँ हिलने लगे थे। और यहाँ जबकि मैसेज आए हैं मार्टिना जो इटली में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम सबको बहुत खुश है होते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे और देशों से भी सुना जाता। और मंजू जी जो दिल्ली द्वारका से ये कार्यक्रम को सुन रहे, तो
1: द्वारका सेक्टर 14
0: द्वारका से
1: हाँ।
0: राजेंद्र जी और वहाँ जा कर के, और हम सब आने वाले हैं बहुत जल्दी वहाँ सेक्टर 14 तक। तो दोस्तों, यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश के यही लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो इस समय जो जल रहा है उसमें कुछ और प्रकाश आए। शांता जी कुछ कहने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ चश्मा पकड़ लिए है।
1: और शांता जी कहने वाले कुछ डच में
0: कहने वाले
1: जरूर।
2: शांता जी अपना चश्मा सोजा कर रहे हैं। हाँ, तो आपने गुजारिश की डच में कुछ कहे, तो मैं जरूर कहूंगी, डच में कुछ कहूंगी हनुमान जी के बारे में।
1: हाँ।
2: हनुमान इज द हिंद खोद दिस्तात फॉर ऑन बखरेंस द लिव द क्राफ्ट मूत टू वेडिंग द फोसी एंड फरत्रोवन। हाँ जी, Het levens verhaal van Hanuman is een uitdrukking van zuivere bhakti yoga. Hij wijst ons een pad dat ieder van ons kan volgen in zijn alledaagse leven. Hanuman brengt iedereen die zijn genade zoekt een gewelddadige verlichting aan van zorgen, stress, vermoeidheid en pijnen. यहाँ तक हमने बताए और आगे में राजेंद्र जी कुछ सुनाएगा, उसके बाद में हम फिर आपसे बताएंगे।
1: बढ़ते हैं आगे की ओर। हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाखी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट रावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बड़ी चलाने के लिए आ रहे थे, परंतु जी ने अब माँ कामाख्या के रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। तो क्यों ना एक संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: अब मैं क्या कहूँ राजेंद्र जी, कहने के तो बहुत है पर क्या कहूँ। इस समय जो हमारे साथ
1: हाँ
0: विवान जी भी बैठे हैं,
1: विवान जी आज हमारे
0: जो
1: साथ
0: नेदरलैंड्स में कुछ कहने वाले।
3: हनुमान जी
0: व्हाट हैप बकरे पफन हनुमान जी
3: आई गिंग राम एंड लक्ष्मण हेल्प।
0: En tijdens welke vritant?
3: In Pataal Lok.
0: Pataal Lok.
1: Oh, toen sab
0: samaj gaya.
1: Samaj gaya.
0: To theek hai, to yahan ek karyakram jo bachcho bhi samajh sakte hai Rajendra ji, to abhi to kuch aur kehne wale hai Vivan.
1: Haan, abhi hamara samay hota hai news ki aur. या कुछ आप पहले कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमें तो अपना और न्यूज का जो बात होता है तो जरूर रख देना चाहिए
1: तो
0: ताकि
1: बढ़ते
0: हम सब
1: न्यूज की ओर बढ़ेंगे कार्यक्रम आगे की तरफ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का न्यूज जो था पूर्ण हुआ। हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। इसके बाद हमारे जो आज के मेहमान हैं, थोड़ा हम पहले करेंगे, इसके बाद वो शुरू करेंगे। तो पहले हम चाहे थोड़ा करें हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट रावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। तो इसके जब इस प्रकार की बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोके से करो। झरोके से पूजा आरम्भ हुई, ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोके से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। विवान भगवान, अब कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बोलिए।
2: ऑन सो विवान।
0: जैसे कि आपने माइक इस समय ऑन कर दिया है, तो जैसे ऑन सो विवान के लिए ये प्रश्न रखा गया कि विवान वेलक हेल द दाद कैं फन हनुमान जी कैं उबर आउट एंकल ऑफ नीत कैं ऑन सो वात फरतल दर ओवर
3: जो कैं फरतल।
0: या ग्राह सेल्फ विवान, अस दैट विल वी ग्राह होर।
3: Hanuman was zo machtig dat hij een keer als kind de zon als een rode vrucht zag en die inslikte. Pas na een dringend verzoek van God rispte hij de zon weer op.
0: Zo, dat is ook een mooie irritant van Suryadev, hè?
3: Ja.
0: Ken je nog meer van die heldendaden van Hanumanji?
3: Ja, zoals net verteld, Hanuman ging ook naar de onderwereld, dus Pataallok. Waar hij Ram en Lakshman had bevrijd, die waren ontvoerd. En Ahiravan, een van de zonen van Ravan, versloeg en op zijn schouders naar Lanka terugbracht.
0: Nou, dan ben ik nog benieuwd, hè, Shantaji.
2: Zeker.
0: Of hij nog meer van die writant van Hanumanji kent. Heb je nog meer? Weet je nog een paar?
3: Toen Lakshman Bhagwan tijdens strijd flauw viel, moest Hanuman hem gaan redden. Dus ging hij op zoek naar Sanjeevani. Dat is een geneeskrachtige kruid. Maar hij wist niet welke van alle kruiden het was. Dus hij heeft een hele berg tot meegenomen om Lakshman te redden.
0: Puur voor die heilige kruid of Sanjeevani Bhuti?
3: Sanjeevani Bhuti.
0: Dat is ook heel knap van Vivaan dat jij nog enkele irritanten van Hanumanji. En hoe kom je daarachter? Heb je in het verleden wel eens films? Want er zijn ook nog tekenfilms geweest wat jij heel graag keek, hè, vroeger van Hanumanji.
3: Ja, klopt.
0: Kijk je nog steeds films van Hanumanji? En hoe kan je dat überhaupt, als je dat kijkt, hoe kan je dat zien?
3: Ja, soms. We hebben nog oude dvd's liggen. En op YouTube staan ook filmpjes.
0: Dus, en wat zou je aan kinderen willen vertellen? Van, moeten ze dit wel katha's, oftewel de Britanten in een tekenfilm dat heel mooi gemaakt is vanuit India. Moeten ze dit wel vaker zien?
3: Ja, als je geïnteresseerd bent, zou ik zeker kijken.
0: तो राजेंद्र जी, जैसे कि विवान ने कुछ संदेश और हनुमान जी के वो भी सुना चुके हैं, तो हम सब क्यों ना वृतांत के आगे बढ़ते हैं। शायद अभी
2: इसमें मुझे संस्कार दिखाई दे रहे हैं।
0: अच्छा, तो संस्कार कुछ
1: तो नैनों में तेरी ज्योति, सांसों में तेरा नाम, क्यों ना इसका
0: चला देते और निकाला गया हमारे शांता जी के पिटारा से।
1: हाँ।

0: नैनों में तेरी ज्योति, सांसों में तेरा नाम, बहुत ही सुंदर जो गीत था वो बहुत ही अच्छा था। चलते हैं आगे की ओर। पर यह युद्ध आसान न था, अहिरावण की बात चल रही थी युद्ध की, तो उस समय आसान नहीं था युद्ध। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, तो फिर पांच पांच के रूप में जिंदा हो जाते। बड़ी मुश्किल से तो पहले वो मरते, फिर पांच पांच के रूप में जिंदा हो जाते दोबारा।
1: तो ये बड़ा तूफान,
0: बड़ा तूफान। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है, अहिरावण उसे ब्लात हर लाया है, वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ है, वह अहिरावण के राज जानती होगी, उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसकी चुंगुल से मुक्ति करा देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ, मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती, लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊँगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं, आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया, मैं अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ, अगर आप मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के बध का रहस्य बताऊंगी।
1: चित्रसेना,
0: चित्रलेखा, चित्रसेना ने कहा।
1: चित्रलेखा तो जो कथा सुनाते, चित्रसेना ने, और यानी कि उसके पास वो गुप्त राज था।
0: हाँ,
1: जैसे ये मारा जा सकता।
0: हाँ, फिर हनुमान जी सोच में पड़ गई, भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं, वह किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगे, मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगी कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं, असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोली, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है, यह विवाह तभी होगा जब हमारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए, यदि वह टूटा तो उसे अपशकुन मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। हनुमान जी शर्त मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि एक जो
1: जिस पे यानी कि जो पलंग पे
0: यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे, जिस पलंग पर भगवान राम उनके साथ बैठेंगे,
1: हाँ जी,
0: वह सही सलामत रहना चाहिए, यदि वह टूट गया तो मान लेना कि अशकुन हो गया और वचन टूट जाएगा,
1: कैंसल। बात,
0: हाँ, तो क्यों ना एक सुंदर नगमा की ओर बढ़े और फिर हम
1: आज तो नगमा काफी। पर राजेंद्र जी, विवान को भी मैंने और प्रश्न करना है।
0: हाँ, जरूर,
1: क्योंकि हमारे यौंगर जो है इस समय भी ये कार्यक्रम को सुनते हैं, और यौंगर को ये जरूर ये संदेश देना है कि कुछ ना कुछ उन्हें भी यह प्राप्त है कि इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है कि ना। तो विवान, आप ये बताइए कि और हनुमान जी,
2: zou ik er eentje vertellen?
1: Je mag zeker eentje vertellen.
2: Nou, toen Ram Ravan had verslagen en terug naar Ayodhya ging, hielden ze een feest voor hun winst. Toen kreeg Hanuman een cadeau van Sita. Dat was een mala genoemd, met allemaal parels. Maar in plaats van dat Hanuman dit aandeed, ging hij in elke parel kapot maken en kijken of hij Sita en Ram kon vinden. Toen begon Lakshman hem uit te dagen en zei hij waarom hij dat doet. Toen vertelde Hanuman dat hij had gehoord dat Ram en Sita overal aanwezig zijn, in elk voorwerp of in elk mens. En toen uit uitdaging vroeg Lakshman aan hem of Sita en Ram ook in zijn hart zijn. En om dat te bewijzen scheurde Hanuman zijn borstkas open en wat bleek, Sita en Ram waren daar ook aanwezig.
1: सो तो राजेंद्र जी ये वृतांत तो शांता जी इस पे आपको कुछ कहना विवान जो ऐसे ये संदेश को सुना है कि ये तो मुझे भी ना पता होता पर इन्होंने ये वृतांत बताया कि कैसे कि हनुमान जी का और उन्होंने अपना सीना फार करके और उसमें ये संदेश देते हैं कि भगवान उसमें एकदम बिल्कुल साक्षात है. तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं.
0: हाँ गीत की ओर तो बढ़ेंगे
1: पर मेरे ख्याल से शांता जी भी कुछ पहले कहने वाले हैं.
0: हाँ
1: तो शांता जी पहले आप.
0: नहीं भारत से अभी मंजू जी ने कुछ भेजा है
1: तो पहले मंजू जी के
0: वाला पढ़ा जाए.
1: हाँ जरूर सुना दिया जाए.
0: मंजू जी कहती हैं भारत से कि प्रेम और मित्रता मन से होती है मतलब से नहीं.
1: प्रेम और मित्रता मन से होते हैं मतलब से नहीं.
0: नहीं तो ये संदेश कितनी कंट्रियों में सुन लिया लोगों ने मंजू जी का.
1: बस ज्यादा नहीं 188 देशों तक के कार्यक्रम को सुना जा सकता है. तो हम सब कुछ न कुछ संदेश यहाँ पर रख देते हैं और अभी हम सब और भी संदेश लेकर आए हैं पर राजेंद्र जी शांता का पिटारा की ओर देख रहे हैं और कुछ उसमें से निकाल करके हम सब के लिए छोड़ने वाले हैं.
0: शांता जी का पिटारा से एक चीज निकली हुई
1: और छोड़ देते हैं. माइक तो पहले शांता जी का तो आ नहीं इस समय तो शांता जी पहले आप.

0: नैनों में तेरी ज्योति, श्वासों में तेरा नाम, बहुत ही सुंदर जो नगमा था, बहुत ही अच्छा था। तो क्यों ना हम आगे की तरफ बढ़े। शांता जी कुछ कहना चाहते हैं अपने पिटारा से?
1: शांता जी पिटारा आजकल शांता जी सिर्फ पिटारा में गाना भर के नहीं लाता है, कुछ संदेश भी लेकर आता है।
2: हाँ। हनुमान जी के बारे में हम डच भाषा में कुछ कहेंगे कि हनुमान इज एन इनकारनासी फन खुद शिवा, शिवा फॉरम सामन मैथ ब्रह्मा एंड विष्णु द थ्री एन हेड फन खुद इन द हिंदुइज्म। ब्रह्मा इज द स्केपर, विष्णु इज द इंस्टेंट होल्डर एंड शिवा द फर्नीतर हु वेल हैथ नीड सो लाइक खा द हिंदुइज्म अर्थ फन हैथ बस्तान फन एन खुद खुद इज फॉरमलोस द अर्थ थिंग van zijn voortreffelijke kwaliteiten vereren de hindoes in de verschillende godheden. Alle godheden zijn uitdrukking van de ene.
1: तो शांता जी भी हॉलैंड्स यानी कि डच में ये हम सब के लिए कुछ संदेश को और सुना ही दिए। और राजेंद्र जी ये बात हुआ कि अभी भाई महेंद्र जी जो हमारे बड़े भैया है, जो हमारे अनाउंसर साथी जिनसे हम सीखते हैं, कोलेखा है, तो उन्होंने फोन किया और ये बात रख दिया कि भाई ये तो बताओ कि कौन जानते हैं मगर ध्वज का माँ का नाम। तो अभी तो हम सब जरूर ये इसके बारे में खुलासा करने वाले हैं, पर जो जिसके पता होगा तो हम सबको फोन करके बता सकते हैं। शांता जी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है?
2: हाँ, जरूर से फोन लगा,
1: क्योंकि मगर ध्वज तो था जो और हनुमान जी का पुत्र, पर उनकी माँ का नाम क्या था, तो हम सब जरूर उसका और खुलासा
0: अगले चक्कर में
1: खुलासा होने वाले हैं। पर राजेंद्र जी बस समय का रफ्तार जोरी से चल रहा है और हम सबको आगे बढ़ना है, तो
0: जरूर
1: आगे का वृतांत क्या?
0: आगे का वृतांत है, जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई, उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है, इन दोनों के कुछ शरारती राक्षसी मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया, मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे।
2: भ्रामरी मतलब
0: मधुमक्खी?
2: अच्छा,
1: मधुमक्खी।
0: भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी को पीड़ा सुनकर आया था, अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भोरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते थे, ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उनके उतने नए रूप बन गए, इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। तो क्यों ना एक कम सुंदर सा नगमा की तरफ बढ़े और इसके बाद
1: राजेंद्र जी नगमा की ओर बढ़ेंगे जरूर, पर मुझे तो कुछ और कहना था।
0: आप पहले आप कह दीजिए।
1: पहले मैं?
0: हाँ।
1: तो ये है बात, अपने कहावत है कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितना बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और ये बात सुन के तो मैं विवान जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि विवान यह सो फिल मोह और वृतांत फन हनुमान जी फरतेल्थ मार बहालफा आल दी ओफर हनुमान जी हत लिखामल कक्राख वा थाई बस्खिक्त हते ओक नोख आख्त अंदर क्राख्तन कहीं वात दार ओफर फरतेल कहीं ये दी।
3: Ja, deze krachten worden Siddhis genoemd. En hij had er 8 nadat hij ook natuurlijk heel sterk was en gewoon veel lichamelijke kracht had. Zijn eerste was Anima, de gave om zich te verkleinen. Mahima, de gave om zich te expanderen. Garima, de kracht om zich te verzwaren. Lakhima, de bekwaamheid om zijn lichaam lichter te maken dan de lucht. Dus heel erg licht. Prati, de kracht om iets naar willekeur gedaan te krijgen. Prakam, ja. De kracht om iets tevoorschijn te halen of te laten verdwijnen. Vashitva, de kracht om de controle te hebben over alle schepselen en hun naar jouw wens te laten handelen. Ishitva, de kracht om dingen uit het universum te materialiseren en te doden, de doden te laten herleven.
1: तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन रहे हैं कि भगवान हनुमान जी को आठ प्रकार के और भी और शक्तियाँ थे जिसे वो छोटा भी बन सकते थे। तो शांता जी आपको ये वृतांत भी पता होगा कि वो अपने आप को इतना छोटा कर लिए थे कि सुरसा के मुंह में जाकर निकल गए और दुनिया पे एक ही मंदिर बनाया गया है कि जहाँ पर सुरसा भी और वो मंदिर है वो आपको पता कहाँ
2: मुझे नहीं पता
1: विवान आपको पता कहाँ है
3: दिल्ली
1: दिल्ली का कहाँ
3: वेरी
1: तो दोस्तों विवान को बोले कि पता कह रहे हैं कि पता है पर दिल्ली का और करोलबाग
0: किस चीज का
1: सुरसा हाँ तो वहाँ पर और ऐसा मूर्ति है तो जाके जैसे कि मुख की तरह बना हुआ है उसमें लोग जा सकते हैं अंदर और हाँ और आ सकते हैं तो हाँ इस प्रकार से तो राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर गीत के से
0: हम उस मंदिर में बहुत बार जब हमारा रास्ते था कॉलेज का तो उधर से आते थे तो वहाँ पे बाइक लगाया और अपना चले गए मुख से और पीछे से पूंछ से आ गए
1: पूंछ से आते थे ऐसा
0: हाँ करोलबाग में बड़का मूर्ति रहे
1: हाँ बहुत बड़ा मूर्ति हाँ। वो मूर्ति जब बन रहा था 2001 से नहीं 2001 वो काफी साल लगा वो मूर्ति हाँ। वो मूर्ति को बनाने को हाँ। मंदिर को बनाने को
0: हाँ।
1: तो राजेंद्र जी अभी तो हमने सिर्फ देखा है हमने गया नहीं तो अब तो जाना पड़ेगा
0: जरूर
1: जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले
0: जरूर
1: हैं।

0: मंगल बार 13 है और कौन सा बार 13 है बता रहे थे शांता जी?
1: शनिवार 13।
0: शनिवार 13 है तो मंगलवार और शनिवार तो दोनों रहे ही, तो क्यों ना उनको आगे बढ़ाया जाए।
2: दियो सब चाहिए कौन विचार बिचारो।
0: तो इस प्रकार से मंगलवार और शनिवार दोनों उन्हीं का रहा, आगे बढ़ते हैं। इस अमृत के कारण दोनों राक्षस जैसे बात चल रही थी उस तरफ बढ़े, फिर हनुमान जी रहस्य से जानकर लौटे। मकर ध्वज ने यही रावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया, वही आखिर हनुमान जी के सामने कहां तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की, हनुमान जी पसीज गए, उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोली, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार से लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, फिर भी हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए, फिर उन्हें कामाक्षी देवी को वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया, उत्तर दिशा में ब्राह्मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान जी ने ये अपने रूप धारण किए और उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। अब उसके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इस प्रकार पंचमुखी का आपने वृतांत सुना।
3: तो ये हुआ पंचमुखी का सारा रहस्य, ये था,
0: ये रहस्य था पंचमुखी का।
1: तो इसके बाद में, इसके बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसको श्री राम का वरदान है, जिसको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनका शान है, बजरंग बली जिनकी पहचान है, संकट मोचन
0: नाम तियारू
1: हनुमान है।
0: तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए।
3: जरूर जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा के और हम सबको जरूर बढ़ना है, क्योंकि राजेंद्र जी सुपर फास्ट तो है, पर चला देते पहले।

तो इस प्रकार से हमारा जो हनुमान चालीसा था उसका हम लोगों ने पाठ किया और सब लोगों ने किया। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय की। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहाँ आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुई, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था, वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने भी कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है, अहिरावण तो मारने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल न हो पाते, कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी के इतनी

0: अब होगा समस्या
1: गा। पलंग धाराशाही हो गया, चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़ी और फिर चित्रसेना से बोली, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे यह तो बहुत अनिश्चित है, मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गई। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़ी बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊँगा। इससे वह मान गई।
0: तो यानी ये एक वृतांत जो अभी श्री राम का समय जो सतयुग कहा जाता ना,
1: हाँ,
0: और नहीं
1: त्रेता
0: कहा जाता है, और ये उसे ये
1: द्वापर में
0: और उनके पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ।
1: हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुबेल पर्वत पर लौट आए। स्कंद पुराण की कथा इस प्रकार से हुई। और बढ़ते हैं एक सुंदर सा नगमा की ओर। और जो महेंद्र जी कह रहे थे मकर ध्वज की माता का नाम, किसी का फोन नहीं आया अभी तक,
0: तो अभी बाद में सुना देंगे, पहले गीत की ओर
1: एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके ओर बढ़ेंगे।

0: मोह भयो ये संकट भारू। तो क्या किसी को पता है कि हनुमान जी की पांच छलांग?
1: राजेंद्र जी, पांच छलांग हनुमान जी ने मारा?
0: हाँ,
1: ये तो एक छलांग को पता है मैंने कि उन्होंने बस यहां से मारा छलांग और जाकर के श्रीलंका पहुंचा।
0: नहीं, पांच छलांग।
1: पांच छलांग।
0: अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी नारद मुनि और सनत कुमार ही ऐसे देवता थे जो अपनी शक्ति से आकाश मार्ग में विचरण करते थे, जबकि अन्य देवी या देवता के वाहन होते थे, और जो अन्य देवी देवता होते थे उनके वाहन या क्या होते थे?
1: वाहन
0: होते थे, वाहन।
1: वाहन यानी जैसे कि ब्रह्मा जी के और हंस होते थे ना?
0: हाँ, सरस्वती के,
1: सरस्वती का हंस।
0: हालांकि ऐसे भी कई ऋषि और मुनि थे जो अपनी ही शक्ति से आकाश मार्ग से आया जाया करते थे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। कहते हैं कि धरती पर एक कल्प तक शरीर सशरीर रहेंगी। आओ जानते हैं कि वे पांच बार उड़कर गए थे या छलांग लगाई थी। पहली छलांग, हनुमान जी ने अपनी यह पहली छलांग अपने बचपन में लगाई थी। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे। हनुमान जी सूर्य भगवान के निकट पहुँच कर उन्हें पकड़ कर अपने मुँह में रख लिया। उसके बाद तो जगत में हाहाकार मच गया। आगे की कथा तो आपको पता ही है।
1: ये वृत्तांत तो आज मैं भूल ही गया था कि विवान ने भी कहे थे ना। तो ये बचपन का वाला,
0: ये पहली छलांग,
1: पहला छलांग।
0: अब दूसरा छलांग है, सबसे पहले वाली। पुत्र अंगद को समुद्र लांग कर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊँगा लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है, मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। तब जामंत के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का अभाव हुआ तो वे दो छलांग में समुद्र को पार कर गए। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले माता सीता को राम की अंगूठी दी, फिर राक्षसों का वध करने के बाद मेघनाथ के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया, और फिर रावण के उकसावे पर लंका दहन कर वापस लौट आए। ये उनकी दूसरी छलांग थी।
1: दूसरी छलांग।
0: अब तीसरी छलांग
1: तो सुना दो राजेंद्र।
0: राम लक्ष्मण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई बानर मूर्छित हो गए। जामंद के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। चौथी छलांग,
1: ये था चौथी छलांग।
0: ये तीसरी छलांग थी, अब बढ़ रहे चौथी छलांग की ओर।
1: अच्छा,
0: अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण के कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया। दोनों को यह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने देखा दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण के बानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उनका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। ये उनकी चौथी छलांग थी। बढ़ते हैं पांचवी छलांग की ओर।
1: पांचवी छलांग की ओर।
0: इस छलांग में हनुमान जी लंका से सीधा अयोध्या पहुंच गए।
1: आग लगाकर?
0: नहीं, जब युद्ध समाप्त हो गया सब कुछ।
1: ओ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो सीधा
0: लंका से अयोध्या,
1: अयोध्या
0: एक छलांग में, और वहाँ से भगवान राम के राज्य अभिषेक में शामिल हुए थे और वहीं पर वे राम की सेवा के लिए नियुक्त हो गई। इस प्रकार से उनकी पांच छलांग सब लोगों ने सुनी। मुझे लगता कि जिनको नहीं पता था उनको भी पता हो गया। बढ़ते हम अपने किसकी ओर,
1: अभी एक सुंदर सा गीत की ओर।
0: हाँ,
1: तो सुंदर सा गीत की ओर हम सब बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लागी छूटेना की ओर बढ़ेंगे।
0: मुझे लगता है कि हमें लागी छूटेना की ओर बढ़ना पड़ेगा।
2: हाँ।
0: क्योंकि हमारा समय बहुत कम रह गया है,
1: तो हम सब उस ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र जी और शांता जी, आज का संदेश तो काफी संदेश जो हनुमान जी के बारे में हम सबको प्राप्त हुए ना,
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंभीर था,
1: गंभीर रूप से। तो दोस्तों, हम सब धीरे धीरे और वो गीत की ओर बढ़ रहे हैं, और वो गीत जो हम सब इस समय राजेंद्र जी प्लेयर पर रखने वाले हैं। तो राजेंद्र जी,
0: बढ़ते हैं आगे।

दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वालों को भगवान कहते हैं और संकट हरने वालों को हनुमान कहते हैं। सुनने वालों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने सुनने के लिए, और यहाँ से सभी का शांता जी के प्यार भरी राम राम प्रणाम।

0: Sup Quick, namaskar en dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा।
2: सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा।
3: तो गरीब तो सब दीवाना ही है, सोचना क्या है।
2: सुनने वालों, जो कि हमारे साथ इस समय तक बने रहे 2 घंटा से, और मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी आज की, और हमारे साथ साथ देते हुए हमारा भी उत्साह बढ़ता है। जब कोई साथ देता है तो सबको, यानी सेवक राजेंद्र सिंह का उनको प्रणाम। और फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय, इसी अगले हफ्ते इसी समय इसी बार। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, नमो नमः।

जैसे कि आपने सुनी लिया है कि हम सब अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आकर जरूर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि हमारे भाई महेंद्र जी ने ये प्रश्न रखवाए थे कि मगर ध्वज का माता के नाम का है, तो ये जरूर खुलासा किया जाता है कि उनका नाम मकरी थे। और ये बात जरूर हम जाने कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आज के, और हमारे सहयोग देने वाले शांता खेमई जी, हमारे पैनल के पीछे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ नौजवान विवान भगवान जी, और मैं भी आपका सेवक संजय। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर और पहुँचे होंगे। सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार।